पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्योछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा के, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरे हो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधावल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी, प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली, आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो
तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भगवती का रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से। जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव, शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो। तो कार रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भेजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू क्या ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग ना चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तो मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे, बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं, इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो गोविंद ने ही बता दिया, बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है,
वो तब निर्मल होता है, ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। तो हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहां की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माणुश्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्त मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या? सब भोग जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना,
मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया। मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप। सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं, हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित है, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, अय मति मंद हित कुशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है। वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, सब जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मरण, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले, तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरिराधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा! देखो, जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है।

ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम, दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे, थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, कहता है हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं अब भी पार हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर, तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे को ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या है, तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है। ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है, अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका।

0: यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए। अंतर में देखो ये बात गई क्या हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हा लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उनका कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो साफ से कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू। उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: गुड मॉर्निंग फरीदाबाद, मैं हूं आपकी पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई जगह या सिचुएशन देखकर लगा हो कि यार ये तो पहले भी हो चुका है? इसी फीलिंग को कहते हैं देजा वू। तो आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी। आप दोनों का शो में बहुत बहुत वेलकम है।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: तो ज्योति जी, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई एक्सपीरियंस पहले भी हो चुका है तो स्पिरिचुअलिटी इसे किस नजरिए से देखती है? क्या इसका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हमारा जो आत्मा, जिसको हम जो बॉडी के साथ जो चला रही है शरीर को, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और हम सब इस बात को जानते भी हैं कि आत्मा जो शरीर की मालिक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सभी जन्मों का पार जो है वो रिकॉर्डेड है। और जब वो रिकॉर्डेड है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉल हो जाता है, माना कई बार स्पीड से चल जाता है, आगे हो जाता, रिवाइंड हो जाता, तो हमें लगता है कि शायद ये पहले भी हो चुका है। तो ऐसे ही कुछ हमारी भी मेमोरीज में होता है। आत्मा के अंदर बहुत समय का पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं 5000 ईयर्स का रिकॉर्ड है पार्ट, और ये पूरा ही रोल प्ले होता है। और आफ्टर एवरी 5000 ईयर हमेशा वो रिपीटेशन होती रहती है। तो कोई भी चीज अगर हमने किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं हमें रिकॉल हो जाता है, जिसे हमें लगता है कि ये पहले भी हुआ है।
0: इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या इस फीलिंग का कनेक्शन हमारी सोल से भी हो सकता है? इसी पे बात आगे करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, कुछ लोग डेजा वू को सोल मेमोरी से कनेक्ट करते हैं, क्या ब्रह्मा कुमारीज की टीचिंग्स में इस तरह के कनेक्शन को लेकर कोई पर्सपेक्टिव मिलता है?
1: जी बिल्कुल, जो आपका वर्ड है कि हो सकता है, तो यस हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: है ही, ये मैं नहीं कह रही, हो सकता है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बहुत ज्यादा डिग करते हैं या विश्वास रखते हैं, तो कई ऐसे हमारे होली बुक्स, हमारे ग्रंथों में ये वर्णित है कि जो भी ये हमारा जो नाटक जिसको कहते हैं, इस वर्ल्ड जो ड्रामा है इसे कहते हैं, जिसको कईयों ने कहा है कि ये तो रंगमंच है, हम कठपुतली हैं, डोर उसके हाथ में है। किसी बहुत बड़े फिलोसोफर ने ये तक भी कहा है कि देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड, यानी आप और मैं अचानक नहीं मिले, हम पहले भी मिले थे, आज भी मिले, आगे भी मिलेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो उसी तरह का कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारीज भी मानती है कि ये जो ड्रामा है जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, मीन्स सब कुछ बना हुआ है, वी आर जस्ट रिपीटिंग एंड प्लेइंग द प्ले। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज भी इस कंसेप्ट को मानती है और ऑलमोस्ट एक 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, ऐसा वो कंसेप्ट जो है वो प्रेजेंट करती है सबके सामने कि हर 5000 ईयर्स के बाद वी रिपीट द सेम गेम, हम सब कुछ वही रिपीट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एक अगर मॉस्किटो भी मूव करता है तो वो पहले भी मूव किया था, आज भी मूव हो रहा है और आगे भी मूव होगा, इस तरह का कंसेप्ट हमारे होली बुक्स में मिलता है।
0: और जब सोल की बात होती है तो पास्ट लाइफ का थॉट भी आता है और इसी पे आगे बात बढ़ेगी, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, कई लोग डेजा वू को पास्ट लाइफ या पुनर्जन्म से जोड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारीज इस कंसेप्ट को किस तरह एक्सप्लेन करती हैं?
1: अगर जैसा कि पहले भी इस बात को हमने कहा कि हाँ, ये पूरा पास्ट लाइफ से हमारा जुड़ा हुआ होता है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि पूर्व जन्मों का हमारा कोई हिसाब किताब है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ की चीज़ें, जैसे कईयों को मेमोरीज याद आ जाती हैं, आपने देखा होगा पास्ट की मेमोरीज को वो लेकर के आए, और कई फिलोसोफर्स हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग भी हम देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट अगर किसी का हील करते हैं, जैसे एक महिला थी, उनको जो है बहुत डर लगता था चूहों से, इतना ज़्यादा वो डरती थी कि उस डर से उनको स्वेटिंग होने लग जाती थी, यूरिन पास हो जाता था, शिवरिंग होने लग जाती थी, तो उनको ये लगता था कि इतना डर तो नहीं होता है चूहों से, आमतौर पर लोग डरते हैं लेकिन इतना टू मच में डर नहीं होता। तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाया कि भाई सबने सोचा ये शायद इनके मन का वहम है, तो जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने हिप्नोटिज्म के माध्यम से उनको पास्ट लाइफ में लेकर के गए, जैसा कि पास्ट लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं, वो लोग इस चीज का रिसर्च करते हैं, तो पास्ट लाइफ में उन्होंने बताया कि वो कोई जगह पर सैनिक थी और वहाँ पर उनको जो दुश्मन था उन्होंने उनको पकड़ लिया था और उसको एक ऐसी कोठरी में रखा गया था जहाँ उनके मुंह को जो है वो चूहों की, जो चूहे थे उस बैग के अंदर, और उनके मुंह पे बांध दिया गया था और उनके काटने से उसकी मौत हुई थी। तो मानो वो जो पास्ट का डर था वो उनका अभी भी काम कर रहा था, जो उसको देखते के साथ वो रिकॉल हो जाता था कि उनको इतना डर बैठा हुआ था, क्योंकि कोई भी चीज आत्मा पे इम्प्रेशन पड़ जाता है किसी भी चीज का, और वो डर ये किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का भी ऐसा डर बैठ सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई है पास्ट की लाइफ में जिससे उस व्यक्ति को देखते या उस तरीके के लोगों को देखते उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। तो ऐसे बहुत सारा पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंसेस होता है, और ब्रह्मा कुमारीज के अंदर अगर हम कहें तो इसको हम मानते हैं कि 5000 वर्ष का जो ड्रामा है उसमें 84 बर्थ का हमारा जो है वो रिसाइकल होता रहता है, हम रीबर्थ में आते रहते हैं, तो वो सारा हमारा 84 बर्थ का कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है जो हमें एक दूसरे के साथ चुकतू करना है, उसे हमें पूरी तरह से उसका बैलेंस क्लियर करना है। किसी को हमने जैसे अगर दिया है कर्जा, तो चाहे हम ड्रेस कितनी भी बदल लें तो वो कहीं ना कहीं हमें उसको पे तो करना पड़ता है, तो ये कार्मिक अकाउंट है, पास्ट का भी हो सकता है और आगे का,
0: क्योंकि कभी कभी ये फीलिंग बार बार भी होती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसी पे बात आगे करेंगे लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: टेलीविजन ने इंग्लैंड के मैच की टिकटें भेजी हैं।
1: नया नजरिया
2: विद आरजे पलक।
3: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, अगर किसी को बार बार डेजा वू फील होता है तो क्या उसे कोई स्पिरिचुअल मीनिंग ढूंढना चाहिए या इसे एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए?
4: ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैं यही कहूंगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के साथ साथ इसे नॉर्मल ही हम लेकर के आगे चलें। बहुत ज़्यादा डिग करना या बहुत ज़्यादा इसके प्रति परेशान होना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये आवश्यक नहीं है। आपको एक फीलिंग आई तो ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी स्थान पे जाकर के मुझे ऐसी फीलिंग दे जब वो फील होता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। हो सकता है सेम जो स्ट्रक्चर है वो किसी और जगह का भी रहा हो और मेरी मेमोरी ने उसको क्लिक तो कराया लेकिन फील कराया कि मैं इसी जगह पर आई हूँ, जबकि सिमिलर बहुत कुछ सिमिलर रहा हो वहाँ का, वो मैं भूल गई कि वो उस जगह में गई थी, लेकिन वो जो आपका जो एरिया है, जो वहाँ की बनावट है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वो चीज़ हमें मेमोरी ऐसा फील कराती कि मैं वापस आई हूँ। तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके प्रति वो हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि कॉन्शियस होने से आपको मिलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली इसके लिए आपके पास कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए बेटर ये है कि इफ यू आर हैविंग हार्ड फीलिंग टुवर्ड्स इट कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो हम स्पिरिचुअल जो मेडिटेशन है, जो भी जितने भी वर्ल्ड में सिखाए जाते हैं, आप उनके प्रति जितना अलर्ट होंगे तो ये कंसेप्ट को आप बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे।
3: तो दोस्तों, आज के कॉन्वर्सेशन से हमें डेजा वू को एक नए नजरिए से समझने का मौका मिला। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, हमारे साथ जुड़ने और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, और आप सभी लिसनर्स का भी शुक्रिया। मैं आरजे पलक आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए नजरिए के साथ। तब तक सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: यह निकाला ना तूने देसी वर का, अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी।
2: थैंक यू।
3: यस, इट्स कंफर्म। हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा।
4: सर, R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में एक बैंक स्पोर्ट है।
3: USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार, स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो।
5: Hey David, आजा ऊपर आ।

मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, मंडे वाली सुबह को हमने कर लिया है खुशी खुशी पास, और अब लेकर आ गई हूँ ट्यूसडे वाली सुबह, यानी कि एक दिन तो चलो इस वीक का निकल गया है और अब कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर से वीकेंड आ जाएगा। देखिए भाई, वीकेंड की तो ऐसी एक्साइटमेंट है ना कि जाता नहीं है उससे पहले हम उसे याद कर लेते हैं। देखिए आ जाएगा, लेकिन आज ट्यूसडे को रिकवर करना है, हमको मौका मिला है बहुत सारी चीजें करने का, वीकेंड अभी दूर है, लेकिन ट्यूसडे की मॉर्निंग को चलिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, और कुछ खास है आज मेरे पास, वो भी आपको बताऊंगी। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो बने रहिए रेडियो महारानी पर। लेकिन उससे पहले फटाफट से गर्मा गर्म चाय की गर्मा गर्म सिप ले लो यार, क्योंकि चाय के साथ ना जो डोपामिन मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता, और यही डोपामिन मिलने वाला आपको रेडियो महारानी के शानदार से ट्रैक सुनने के बाद। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

आप रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। देखिए यार, हाल चाल बेहतर है, लेकिन इस बेहतर हाल चाल को मैं और भी बेहतरीन बनाने के लिए आ गई हूँ। बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, बहुत सारी चीजों के साथ आई हूँ आज। लेकिन सबसे पहले ना बात कर लेते हैं आज के वेदर की। तो मौसम क्या कहता है? देखिए अगर मैं मौसम की बात करूँ, वेदर की बात करूँ, हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 34 डिग्री और मिनिमम रहने वाले 25 डिग्री। विंड स्पीड आपको 5 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 67%। तो आपको पता है ना क्या करना है भाई? अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं थोड़े ही देर में।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गए। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिया, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। तो भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें एक पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से वो अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना ना, मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है, और लव योर सेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ इंजॉय करो। ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुक कर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आपने एक चीज सोच कर देखेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए रील से ब्रेक लिया जाए तो क्या होगा? मैं बताती हूँ ना क्या होगा। ना तो सुबह उठते ही स्क्रोलिंग होगी, ना एक आखिरी रील वाला झूठ होगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर ना एक मैं स्टडी लेकर आई हूँ। तो स्टडी में ना एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों का ब्रेक लेने पर ना आपको मिल सकता है ज्यादा टाइम, बेहतर मेंटल क्लैरिटी, मूड में सुधार और सेल्फ स्टीम में बूस्ट। तो देखिए भाई, बात तो फायदे की है यार, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं ना, एक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, डेटा तो छोड़ दो यार, डेटा तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपको पता है हमारा फोन भी इफेक्ट होता है, हमारी फोन की बैटरी भी खराब होती है। ये तो चलो दो ऐसी ऐसी बातें थी कि ठीक है, जिनका हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया? हम अपनी स्क्रीन को सिर्फ स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम किसी रील को पूरा खत्म होने तक का भी इंतजार नहीं करते। अब आप सोचे कि हमारा फोकस्ड करने का जो तरीका है वो कितना खराब हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग कितना खराब हो गया, और हमने अपने माइंड पर कंट्रोल भी खो दिया। हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं हमें लगता है वही सच्चाई है, जिसकी वजह से हमें इतना स्ट्रेस भी ले लेता है कि यार सब घूम रहे हैं, सबकी अच्छी जॉब हो रही है, सब अच्छा पैकेज ले रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। ये चीजें ना कंपैरिजन को भी लेकर आती है। यहाँ पर अब टाइम हो गया डिजिटल डिटॉक्स करने का खुद को। और स्टडी में ना ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने वालों ने ना स्ट्रेस घटने, ओवरऑल वेलबींग बेहतर होने जैसे फायदे भी देखे हैं। तो शायद 7 दिन रील से दूरी, बोरियत नहीं, ब्रेन की छुट्टी हो सकती है, और साथ ही आपको मिल सकता है एक बढ़िया रीस्टार्ट, एक किकस्टार्ट, जिससे ना आप नई चीजें अपने दिमाग में लेकर आ सको। इस बार आपने करना क्या है, इस बार ना आपने एक हफ्ते का चैलेंज लेना है खुद से, कोई रील नहीं देखनी है, कोई रील बनानी भी नहीं है, पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करना है खुद को, और फिर देखिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है। और फटाफट से यार मैं तो चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा काम भी है मेरे पास। आपका यह अभी भी बैठ कर रील देख रहे हो ना, देखते रहो। और इसी के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी वक्त हो गया है इस म्यूजिक ब्रेक का।

0: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
1: कपड़े?
0: हाँ।
1: ज्वेलरी?
0: बिल्कुल।
1: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
0: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय रितु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
1: द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय रितु, बिगर बेटर बोल्डर।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766 22 00 36।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गए। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इल्लीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्टनर हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिए, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना, ना मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है। और लव योरसेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुक कर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

हेलो हेलो जी। तो आज की फील गुड स्टोरी मैं लेकर आ गई, और आज की स्टोरी ने ना सच में मेरा दिल जीत लिया यार। एक आवाज ब्रो जूते लेगा, और बस ये जो सेंटेंस है ना, इसने किसी का दिन बना दिया। तो देखिए, कभी कभी किसी का पूरा दिन बनाने के लिए ना बस एक छोटा सा जेस्चर काफी होता है। ये बताने वाली है हमें आज की स्टोरी। तो भाई, सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर अमन शर्मा ने ना एक डिलीवरी पार्टनर को देखा जो कि अपने चप्पले पहनकर डिलीवरी करने के लिए आए थे। तभी अमन ने ना अपने ब्रांडेड शूज निकालकर उन्हें ऑफर कर दिए कि ब्रो जूते लेगा, और बस ये जेस्चर। इतना ही काफी होता है किसी का दिन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये डिलीवरी पार्टनर है ना, पहले इसने शूज लेने से मना कर दिया, लेकिन अमन ने इंसिस्ट किया और कहा कि भाई देखो, ये यूज्ड नहीं है, ये मेरे न्यू ब्रांडेड शूज हैं, तो मैं एकदम न्यू चीज तुम्हें दे रहा हूँ। अमन के इतना फोर्स करने के बाद ना, तब जाकर डिलीवरी पार्टनर ने हाँ किया। इसलिए कहते हैं कि आपकी छोटी सी काइंडनेस ना किसी का पूरा दिन बना सकती है। तो अपने अंदर ये काइंडनेस जरूर रखेगा। लव केयर एम्पैथी के साथ ना हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी हैन जी, क्या हाल चाल है बड़ी देर बाद। देखिए यार, हाल चाल बहुत बेहतर है आई नो, और बेहतरीन करने के लिए ही तो मैं आई हूँ। और ना आज मैं एक वायरल स्टोरी लेकर आ गई हूँ। अगर मैं बात करूँ ना आई लव यू की, तो आजकल के टाइम पर ना आई लव यू कहना बहुत इजी हो गया है, करना ही गया। एक मैसेज टाइप करना है, एक इमोजी भेजना और बस प्यार का इजहार हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना उस दौर की, उस जमाने की, तो एक बार इमेजिन कीजिएगा 1964 में किसी ने अपनी वाइफ के लिए 8 फीट लंबा हैंड रिटन लव लेटर लिखा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ना ये पुराना लव लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस लव लेटर की फोटो आई, फिर वीडियो आई, और जब वीडियो सामने आई ना लोग पागल हो पाए। और बताइए खास बात क्या है? खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये लेटर 8 फीट लंबा है, बल्कि खास बात ये है कि सोच के जरा देखिएगा कि इसे लिखने में कितना टाइम लगा होगा, कितना पेशेंस, कितने इमोशंस लगे होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द वायरल पोस्ट, ये कपल 62 साल से शादीशुदा है, यानी कि इन्होंने ना एक दूसरे को अपने 62 साल दिया। अब सोचिए कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को माफ किया होगा, कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया होगा, और इसी तरह करते करते ना आज ये शादी यहाँ तक पहुँची है। और अगर आज प्यार की बात करें ना, तो प्यार सिर्फ डीएम तक रह गया, व्हाट्सएप मैसेजेस तक रह गया। और अगर ज्यादा प्यार किसी को एक्सप्रेस करना हो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ गिफ्ट ऑर्डर कर देते हैं बस। लेकिन अगर देखी जाए ना, प्यार की असली वैल्यू ना उन शब्दों में नहीं है जो आप लिखते हो, बल्कि उस पेशेंस में जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस टाइम में है जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस एफर्ट्स में है जो आपने किसी के लिए किया होता है। तो आज मैं कहानी इसलिए लेकर आई थी, अपने प्यार को ना थोड़ा सा और एफर्ट्स दे करना स्पेशल बना दो। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

यार आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, अभी मेरे पंखे को कुछ हो गया यार। अभी नया लगवाया था और फिर मैं अगर पापा को बोलूंगी ना पापा यार मेरा पंखा चेंज करवा दो, उन्होंने यही कहना कि बेटा तेरे रूम का पंखा ही इतना धीरे क्यों चलने लगता है। तो भाई देखिए, अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही है ना तो आज मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आई हूँ। अब आप बोले यार अंजलि इतना इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना, तो भाई बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना। अगर आपके घर का ही पंखा अचानक से स्लो हो गया ना तो नया लेने की बजाय ना ये जरूर सुनकर जाएगा। गर्मियों में ना अक्सर ऐसा होता है कि फैन की स्पीड कम हो जाती है, तो करना क्या है अपने, सबसे पहले ना नया पंखा लेने से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो फैन में ना हो करना किसी छोटी सी चीज में हो। ये मैंने आज सोचा और तभी मैंने इस पर रिसर्च किया और आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज पंखे को ठीक करने का जुगाड़। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्लेड से या फिर जो मोटर है ना उसके डस्ट को क्लीन कराना है, एंड फिर देखिएगा जो बाद में कैपेसिटर है ना, रेगुलेटर और जितनी भी वायरिंग है ना उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि आपके फैन की मोटर बार बार गर्म हो रही है जल्दी और हवा नहीं आ रही, फिर आपको खुद से नहीं करना कुछ भी, फिर ना आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। यानी कहने का मतलब ये था कि पहले खुद से कोशिश करो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, नया पंखा मत खरीदना। बिकॉज होता क्या है ना, गर्मियों में यूजुअली यही प्रॉब्लम आती है पंखों में और जिसकी वजह से ना हम फटाफट से दुकान पर चले जाते हैं खर्चा करने के लिए। तो देखिए ये ना आज का बिजनेस मंत्र भी है, अगर आपको भी लगता है ना कि ऐसे थोड़ा बहुत पंखा साफ करके आप पैसा कमा सकते हो तो यार आप कर सकते हो, ये चीज ट्राई जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है थोड़ी देर में।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

खैर कौन बनेगा करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया, और ये स्कैम आया कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम के ट्रैप में फंस गया, और हुआ कि सबसे पहले स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखे, किसी भी लॉटरी किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.gov.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी देर में।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य, माँ चंद्र घंटा को करेज और प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है। रियल लाइफ में भी कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हमें पता होता है कि क्या सही है, लेकिन बोलने या स्टैंड लेने से हम हेजिटेट करते हैं। तो अपनी बात रखने और अपने लिए स्टैंड लेने का वो करेज हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं?
1: हम में से ज्यादातर लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें जज किए जाने का डर या रिश्तों के टूटने का डर होता है। लेकिन माँ चंद्र घंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सत्य की आवाज हमेशा निर्भीक होती है। अपने लिए स्टैंड लेना या सही बात कहना कोई अहंकार नहीं है, यह अपनी आत्मा के प्रति वफादार रहना है। जब आपके भीतर यह क्लैरिटी आ जाती है कि आप जो कह रहे हैं वो न्याय और सत्य के पक्ष में है, तो दुनिया की स्वीकृति का डर अपने आप खत्म हो जाता है। शुरुआत छोटे स्तर पर कीजिए, अपने साथ सच बोलिए, फिर बाहर की दुनिया में अपनी आवाज को मजबूती देना सीखिए।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

0: हेलो हेलो फरीदाबाद। देखिए यार, मेरी आवाज़ से ना आज आपको पता ही लग गया होगा कि कितनी ज़्यादा थकान है इस आवाज़ में। और हो भी क्यों ना यार, डेली डेली डांडिया इवेंट्स पर जा रही हूँ, इतनी जमकर डांडिया खेली ना मैंने फरीदाबाद में, तो अब सोचा थोड़ा फरीदाबाद से ना बाहर भी जाया जाए, यानी कि दूसरे शहर की डांडिया भी एंजॉय की जाए। और इसी के लिए ना आज मैं अमेजिंग गेस्ट अपने साथ लेकर आ गई हूँ। नवरात्रि हो, कलरफुल आउटफिट्स हो, ढोल की बीट्स हो और हाथों में डांडिया स्टिक, तो फेस्टिव वाइब का लेवल तो ऑटोमेटिकली हाई हो ही जाता है। और अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ एक ऐसी ही म्यूजिकल और मस्ती भरी शाम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एक्साइटिंग अपडेट लेकर आ गई हूँ मैं। सो मेरे साथ स्टूडियो में है आज प्राइजिंग डीवाज लेकर आ रहा है डांडिया नाइट मैजिक, और जो होने वाली है 17 अक्टूबर और सैटरडे। सो देखिए, एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा। सो वीकेंड पर होने वाली है ये डांडिया, और अगर टाइमिंग्स की बात करूँ, शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक है पदम ग्रीन्स फार्म पालम विहार गुरुग्राम में। और सबसे एक्साइटिंग बात पता है, एंट्री फ्री है यार, और क्या चाहिए, डांडिया हो और फ्री एंट्री हो, फिर तो कुछ और चाहिए ही नहीं ना। तो इस इवेंट में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। सो ये स्पेशल बातें जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है ऑर्गेनाइजर्स ना, इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस डांडिया में। सो मैम, अपने डांडिया नाइट का प्लान किया, तो सबसे पहले ये बताइए कि एंटरप्राइजिंग डीवास के लिए ये इवेंट सिर्फ एक सेलिब्रेशन है या इसके पीछे कोई स्पेशल आइडिया भी है?
1: हाय, आई एम निधि खुराना, आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एंटरप्राइजिंग डीवास। एंटरप्राइजिंग डीवास बिलीव करता है कम्युनिटी को लेके साथ चलने के लिए, तो इसीलिए जो ये इवेंट करा रहे हैं ये पूरी कम्युनिटी को लेके चलने के लिए है। सो जैसा मैंने बोला, ये कम्युनिटी इवेंट है, ये इसमें पूरी फैमिलीज को हम लोग इनवाइट करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स एंड एकेडमीज एंगेज होती हैं, सबको, बड़ों को, सीनियर्स को एंड जूनियर्स, छोटों को, सबको हम इकट्ठा लेके चलते हैं इस इवेंट में। सो डांडिया इवेंट इस तरीके से आया, ये 9th ईयर है हमारा इस इवेंट के लिए। बेसिकली सबको चाहिए होता है कि फेस्टिवल टाइम जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन। सो द एंटायर आइडिया बिहाइंड दिस डांडिया नाइट इज सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल टुगेदर विद योर लव्ड वंस।
0: सो लिसनर्स, काफी कुछ होने वाला है इस डांडिया में, तो वेट मत कीजिएगा, फ्री एंट्री है, फटाफट से पहुंच जाएगा। खैर बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है थोड़ी ही देर में।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। और बात करने वाली हूँ आज एक बहुत ही स्पेशल इवेंट के बारे में जहाँ आपको मिलेगी फ्री एंट्री। तो भाई फटाफट से पहुंच जाइएगा इस इवेंट में। लेकिन ना इवेंट में और क्या कुछ खास है ये जानेंगे। और मेरे साथ ना एक और गेस्ट मौजूद है रेडियो में, तो चलिए पहले इनसे बात करते हैं।
1: सो डांडिया का नाम सुनते ही आता है म्यूजिक, कलर्स, फुल ऑफ फेस्टिव वाइब्स। आपसे इस बार फैमिलीज के लिए क्या क्या ऐसा प्लान किया है जो 17 अक्टूबर की शाम को मेमोरेबल इवनिंग बना।
2: हेलो लिसनर्स, I am Dilip Suri, Secretary of Senior Citizen Forum, Palam Vihar. We are a part of this event which is going to happen in Palam Vihar, Dandiyan Night. Why I am connecting to you for this event is that this is a day, I tell you, you please mark this day that you are going to keep remembering for the rest of your life. It is a family event, full packed energy. Event is going to happen over there. The dance performance will be there, music will be there, live band will be there. So you are going to enjoy a lot. You won't find when the time had flied and it's over. So welcome friends to join us on this day. Day is 17th of October, Dandiya Night at Padam Greens, Palam Vihar.
0: बहुत कुछ है इस इवेंट पे, तो मिस मत कीजिएगा। ये इवेंट फ्री एंट्री है, फटाफट से पहुंच जाएगा। शाम 6 से 11 बजे रात तक का ये इवेंट रहने वाला है और वीकेंड पर है, सैटरडे पर है, तो कोई भी बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई देखिए, जिन्होंने अभी तक एक अच्छी डांडिया नहीं देखी है ना, तो आपके लिए मौका है ये डांडिया विजिट करने का और एंजॉय करने का। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प

0: हेलो हेलो जी, अभी तक डिसाइड नहीं किया ना वीकेंड पे क्या करना है। तो भाई देखिए, मैं बहुत ही अच्छा प्लान लेकर आई हूँ और वो है फ्री डांडिया नाइट। सो यहाँ पर आपको फ्री एंट्री मिलने वाली है, डांडिया होने वाला है, खाना होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो और भी क्या कुछ है इस डांडिया में ये भी जानेंगे। तो पहले तो ये जानते हैं कि क्यों आना चाहिए इस डांडिया में।
1: सर, और जो लिसनर्स अभी डिसाइड कर रहे हैं कि वीकेंड पर क्या किया जाए, उनके लिए बताइए 17 अक्टूबर को पदंग बीम फार्म्स पालम विहार में 6 से 11 बजे तक डांडिया नाइट होने वाली है। वहाँ आने पर उन्हें एग्जैक्टली किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा।
2: हेलो लिसनर्स, आई एम हरीश चंद्र खुराना, प्रेसिडेंट ऑफ सीनियर सिटीजन फोरम पालम विहार। वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट ऑन

0: 17th with association with Awaaz, and the main attraction for listeners will be lot many stalls, food stalls, for music performance and many other interested items. So please, you are invited to join and enjoy the evening. It's going to be a wonderful event and you will miss if you have not decided yet to attend it. Please come and enjoy. Thank you.
1: सो लिसनर्स, काफी कुछ होने वाला है इस डांडिया में, तो वेट मत कीजिएगा, फ्री एंट्री है, फटाफट से पहुंच जाएगा। खैर, बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नए मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है लेकिन हमारा दिल फिर भी वही तीन शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

0: सो फरीदाबाद, अभी तक फरीदाबाद की डांडियाज तो खेल लिए ना, तो चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं। और मैं आज जो एक्साइटिंग डांडिया लेकर आई हूँ ना आपके लिए, यहाँ पर एंट्री का भी झंझट नहीं है। तो अभी तक अगर आपको टाइम नहीं मिल पाया ना, तो ये डांडिया जरूर विजिट कीजिएगा। और यहाँ पर ना एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी है आप सभी के लिए।
1: डांडिया नाइट का ना एक स्पेशल मुझे एक सेगमेंट भी नजर आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए भी है जो अपने बिजनेस को शोकेस करना चाहते हैं। तो स्टॉल बुकिंग इंटरेस्टेड पीपल आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये बताइए।
2: डांडिया नाइट जो 17th अक्टूबर पदम ग्रीन फार्म्स पालम विहार में हो रहा है, कर्टसी श्री प्रदीप कुमार पदम जी उनके साथ मिलके एंड सीनियर सिटीजन ग्रुप के साथ मिलके, इट इज अ फ्री एंट्री फैमिली इवेंट जिसमें शॉपिंग स्टॉल्स एंड फूड स्टॉल सारे लगेंगे। तो किसी ने अगर कनेक्ट करना है टू शोकेस देयर बिजनेस विद अमंग्स द क्राउड व्हिच इज लाइक मोर देन 5000 पीपल वी आर एक्सपेक्टिंग यू नो दिस ईयर, आप कनेक्ट कर सकते हैं निधि खुराना से एट 9650500285।
0: थैंक यू लिसनर्स। बहुत सारी बातें करने के बाद ना वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। और यार इन दिनों ना मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि बहुत सारी डांडियाज है ना, तो ये डांडिया अभी मत मिस कीजिएगा। और इन नवरात्रों को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, आपको बहुत सारे फ्री डांडियाज भी मिल रहे हैं। अगर अभी तक नहीं है तो जरूर जाइएगा और यहाँ पर आपको हम भी मिलने वाले हैं। सो इसी के साथ फिलहाल मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज आऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।
3: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: चुल।
1: एक सिंपल सी लाइन मैंने कहीं रीड करी थी जिसके साथ आज शो की शुरुआत हम करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। एम्पावर दी वुमेन, एम्पावर दी वर्ल्ड, ये एक सिंपल सी लाइन सुनने में है, बट इसके पीछे का जो मीनिंग है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो एक अलग फीलिंग आने वाली है। एम्पावर दी वुमेन मतलब अगर आप एक वुमेन को एम्पावरफुल बना देते हैं, उनको ऐसा बना देते हैं कि वो सशक्त हो, अपने काम करने के लिए खुद आगे बढ़ सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट एक वुमेन आप बना देते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड को एम्पावर कर देते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को एक साथ इनहेंस कर दे सकते हैं। ये पावर होती है एक वुमेन एम्पावरमेंट की, और अगर आप ये कर सकते हैं तो समझिए आप एक बदलाव लाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में और आपके स्टेट में आ रहा है, इधर हर जगह एक चेंज, एक रेवोल्यूशन आने की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन को आगे बढ़ाने की सोच भी रख ली है दिमाग में, यू विल ग्रो टू नेक्स्ट लेवल। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
1: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
2: द दिवाली स्वारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: Get ready, Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Clorox Entertainment present Clorox Garba Night, 17 October, शाम 6 बजे से.
0: Venue partner, Immense Residency Hotel, Sector 28, Faridabad. Radio partner, Radio Maharani 89.6 FM.
1: Supporting partners, Art of Living, Faridabad. Studio One, Dance and Fitness.
0: Right partner, Vogue, Women Occupied Cars. Sport partner, Not Out. Health partner, Ajaveda. Security partner, Big Panther.
1: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
2: चमा चमा नाचे, थमा दम ढोल बजे, non-stop हल्ला मचेगा.
1: Tickets available हैं all events की site पे. या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, DJ की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ.

आज सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए। मैडम बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल मीडिया पे आप खुद ट्रोल हो रही है, स्पॉटलाइट में आ गई आप निगेटिव वाली। पॉजिटिव होती तो बात अलग थी कि आप अपनी सीट दे देती किसी को कि और उसकी वीडियो डाली होती कि नहीं यार ये देखो मेरा सिविक सेंस ये है, नहीं मेरी जो एक कर्टसी है वो ये है कि उनको नीड थी मैंने सीट दे दी। बट अपनी सीट के लिए लड़ना, वो भी स्पेशली मेंशन करके विंडो सीट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो गलत बात है ना मैडम। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

She have changed the world or she have explored the world for upcoming girls. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। अक्सर ये होता है ना, एक वुमेन एक नई फील्ड एक्सप्लोर करती है और उसके बाद बहुत सारी वुमेन उसे देख के उस फील्ड में आगे बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ आज की जो हमारी वुमेन है उन्होंने करके दिखाया था, जो आज हमारे साथ शी हैव चेंज द वर्ल्ड में है। मैं बात कर रहा हूँ किरण बेदी मैम की। कभी पुलिस की जो वर्दी है ना, वो सिर्फ पुरुषों का ही सिंबल माना जाता था या उनकी ही वैकेंसी वहां पर आती थी। फिर आई किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। 1972 में उन्होंने वो कर दिखाया था जो शायद इससे पहले भारत में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अपनी ईमानदारी, डिसिप्लिन और निडर अंदाज से उन्होंने पुलिस को सर्व किया और एक नई पहचान बना ली। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर जेल सुधारने तक उनके कई फैसलों ने सिस्टम में पॉजिटिव बदलाव ला दिए। और किरण बेदी सिर्फ एक कानून की रक्षक नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं का वो विश्वास है, वो हिम्मत है और वो मेहनत करते रहने के पीछे की मिसाल है। और ये कहानी उन सभी लेडीज को मोटिवेट करती है जो सोचती हैं कि इस फील्ड में वुमेन जाके क्या ही कर पाएगी, कैसे ही कर पाएगी। तो किरण बेदी ने कहा है, कोई भी ऐसी फील्ड या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक वुमेन नहीं कर सकती, यानी नारी नहीं कर सकती। नारी ठान ले तो नारी सब कर सकती है, इसीलिए वो है नारी नंबर 1। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सिनेमा का कैप्सूल। वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नई मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं।

बाबू वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एक बिहारी सौ पे भारी, पर ये थोड़ी सी हल्की पड़ गई मेरे को लग रहा है अपने प्लानिंग। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की उस महिला की जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है भाई साहब, और क्यों ना हो। मैडम ये क्या हरकत थी और क्या जरूरत थी आपको ये चीज करने की? आपको मालूम है बिहार एक ड्राई स्टेट है जहां पर लीगली आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते जो वहां पर बैन करी जा चुकी है और बहुत सालों से बैन है। तो ये क्या तरीका था, फर्स्ट क्लास एसी की आपने ट्रेन कराई, टिकट कराई, उसके बाद उसमें आप दो दो अटैचियां भर के लेके जा रही है, वहां शक हो गई पुलिस को कि कुछ तो गड़बड़ है गुरु, इनकी जो ड्रेस है वो तो मैच कर रही है बट जो इनका बिहेवियर है वो मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने वहां इन्वेस्टिगेशन करी, उनको रोका, तो बैग खोला तो बैग के अंदर से एक बोतल दो बोतल क्या हजारों बोतलें निकल गई। भैया ये क्या क्या करने के मूड से आप लेके जा रही, ब्लैक में सप्लाई करने के मूड में लेके जा रही थी या खुद इतना कंज्यूम करना चाह रही थी, ये नहीं समझ आ रहा। बट वहां जो आप एटीट्यूड से खड़ी हैं वीडियो में, पकड़ने के बाद भी फोन मिला रही है कि रुको अभी कोई छुड़वा देगा, तो मैडम पुलिस है वो, और आपको इलीगल चीज करते हुए पकड़ा गया है जो बिहार के अंदर एटलीस्ट लीगल नहीं है, बाकी स्टेट में लीगल होगी। और ऐसे केस बिहार से क्यों आते हैं जब वहां पर बैन है, तो बिहार वालों को ऐसा क्या है भाई, बिहार के बाहर जाओ अगर कुछ आपको ऐसा कंज्यूम भी करना है तो, उस स्टेट के अंदर ले जाने के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हो। इससे पहले भी बहुत बार पकड़े गए, फिर से पकड़े गए, आगे की कहानी भी नहीं पता फिर कब पकड़ी जाए। बट ये जो एक फीमेल के थ्रू पकड़े गए ये मेरे लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग था यार। मेल तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो ब्लैक कर रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, बट फीमेल माना इक्वालिटी भाई, कंधे से कंधा मिला के चलना, बट ऐसे भी नहीं मिला के चलना यार कि इन चीजों में आप बिल्कुल इक्वल इक्वल आ जाए। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या, धैर्य और डिटर्मिनेशन से जुड़ा है। आज हम इंस्टेंट रिजल्ट के टाइम में जी रहे हैं। करियर में ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल्स, हम सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। तो क्या पेशेंस और कंसिस्टेंसी को हम आज के टाइम की रियल स्ट्रेंथ मान सकते हैं और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे डेवलप करें?
1: आज की इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें हर चीज तुरंत चाहिए, फटाफट सफलता, फटाफट रिश्ते, फटाफट परिणाम। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम का पाठ पढ़ाती है। पेशेंस कोई मजबूरी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने की कला है। जब आप रोज बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो वह कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसे अपनी डेली लाइफ में उतारने का बस एक ही तरीका है, छोटे छोटे कदमों से प्यार करो और परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दो, प्रोसेस पर ध्यान दो।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

आज मैं एक ऐसे लीगल राइट की बात वुमेन्स की करने वाला हूँ जो शायद मुझे ही आज से पहले नहीं पता थी, ये मुझे आज पहली बार पता चली है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ है। राइट टू फ्री लीगल एड, अब इसका मतलब क्या है? मुफ्त कानून मदद का अधिकार। अब आप सोच रहे होगे ना, मुफ्त कानून मदद का अधिकार, ये सब क्या बोल रहे हो? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक भारत में रहने वाली महिला हैं और आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है, वकील की फीस देने का पैसा नहीं है, कोर्ट के खर्चे उठाने का पैसा नहीं है, तो आपके पास ये राइट यूज करने का अधिकार है, जो राइट बनी है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत 1987 में, जिसके तहत ये कहा जाता है अगर आपके पास अपने वकील को देने के लिए पैसा नहीं है या कोर्ट या लीगल चीजों के लिए पैसा नहीं है, तो आप यूज कर सकती हैं फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त में आपकी मदद की जाएगी एक लीगल केस को लड़ने के लिए या उसे कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। ये राइट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास है। कोर्ट फीस में और कुछ नए कानून जो खर्चे हैं उनमें आपकी मदद की जाएगी, पूरी तरह से फ्री नहीं है, बट आपकी हेल्प की जाएगी, कितना कम से कम में वो चीज आपका करवाया जा सकता है। तो ये राइट सिर्फ एक महिला के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DLSA, अदरवाइज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NALSA के अंदर आती है। आप वहां पर जाके मदद मांग सकते हैं ऐसे किसी केस में जब आप सक्षम नहीं हैं कोर्ट फीस भरने के या फिर अपने किसी भी वकील की फीस भरने में, तब ही आप मदद ले सकते हैं। पहले आपको वो प्रूफ करना होगा कि आप सक्षम नहीं हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: गुरुग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिये के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।

ये बात हम कभी नोटिस ही नहीं करते है ना, और इस साइड से हम कभी सोचते ही नहीं है मर्द के लिए। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। आखिर चाहिए क्या एक मर्द को, कभी आपने ये सोचा है? देखिए, उसे ज्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं, ना उसे महंगे गिफ्ट चाहिए, ना उसे शायद आपसे बहुत ज्यादा तारीफ चाहिए। हो सके तो बस उसको इतना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उसे बोले ना तुम मर्द हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तो आप बस उसके कंधे पे हाथ रख के आराम से उससे ये पूछे, आज थक गए होगे, कोई बात तो नहीं, बताओ अगर कुछ बताना चाह रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में। और अगर वो पलट के आपको बता दे तो वही आपकी पॉजिटिव जीत है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा था जो शायद बाहर दुनिया में किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, बट उसने आपको चुना है वो शेयर करने के लिए, तो आप उसकी लाइफ का वो खास पार्ट हो। और अगर आप भी नहीं पूछ रहे हो तो शायद वो किसी को वो बात शेयर नहीं कर पा रहा है। तो एक मर्द को क्या चाहिए, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, उसे बता सके, और वो खुद से आगे नहीं बताएगा तो प्यार से पूछने वाला इंसान सबसे पहला उसको चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट

ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें चार स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, तो 27 तारीख को आप आ रहे हो ना सूरज कुंड मेला ग्राउंड में? अरे अभी तक प्लान नहीं बनाया? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और प्लान नहीं बनाया तो भैया अब बना लो, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 27 तारीख को होने वाली है। सूरज कुंड मेला ग्राउंड से ये बिगिन होगी और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले तो यही बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी कर लो www.halfmarathon.in पे जाके। और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे @RJ तुषार के नाम से, वहां आके पूछ लेना। और ये जो मैराथन है ये 3 फेज में होने वाली है। एक होने वाली है 21.1 किलोमीटर, फिर होने वाली है 10 किलोमीटर, फिर होने वाली है 5

बड़ा फैक्टर इस रेस का होने वाला है और इसके पीछे का थीम ही है ना, एक हेल्थ के लिए आपके कदम उठाने का टाइम आ चुका है और नशा मुक्त हरियाणा जो मेन मोटिव है इस पूरी मैराथन का, वो हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। तो 27 तारीख इस मैराथन का पार्ट बनना 1% भी ना भूलिए, हो सकता है आपकी फिटनेस जर्नी यहीं से बिगिन हो जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सुनते ही लगता है भाई संभल के उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बहुत सारे पंजाबी गानों में, बहुत सारे बॉलीवुड गानों में हमने ये अक्सर सुना है, मैनू जुत्ती ले दे, जुत्ती तेरी चमक दी, जुत्ती तेनू फब दी, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सुनी। बट ये जुत्ती की हिस्ट्री क्या है? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये जो फीमेल जुत्ती है ना, इसकी कहानी भारत की परंपरा से जुड़ी हुई है। जुत्ती का जन्म लगभग 400 साल पुराना है। मुगल काल में इसकी शुरुआत करी गई थी, तब राजाओं महाराजाओं के शाही पोशाक का ये पार्ट हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये और सुंदर बनती गई और धीरे धीरे पंजाबी, राजस्थानी, उत्तर भारत में इसका जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली गई। वहां पर लोग इसे और ज्यादा स्केल पर पहनने लगे, अलग अलग फैशन सेंस के साथ पहनने लगे। पहली की जो जुत्ती होती थी ना, वो चांदी की होती थी, हाथ से करी गई एम्ब्रॉयडरी की होती थी। और इसमें धीरे धीरे चेंज करते हुए इसे नॉर्मल जुत्ती का जो आज हम रूप देख रहे हैं उसमें लेके आए थे। और जुत्ती की सबसे खास बात होती है उसके जरी का काम, मोती का काम, मिरर्स का काम, जो उस जुत्ती के फैशन को एनहेंस कर देते हैं। आज फीमेल जुत्ती की परंपरा फैशन का एक परफेक्ट मेल हो चुकी है। जब जब उन्हें एथनिक कुछ पहनना है या मॉडर्न आउटफिट में एथनिक का कुछ टच देना है तो वो जुत्ती का यूज करती हैं। और पंजाबी कल्चर में जुत्ती का एक अलग ट्रेडिशन है और एक अलग सा रिवाज है। अगर आपने जुत्ती पंजाब में पहन ली है या पंजाबी जुत्ती पहन ली है तो वो रौब आपका वहां पर थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आज मेरा लर्निंग सेशन है, आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे मैं जितना ग्रैब कर सकता हूँ, जितना सीख सकता हूँ ना, वही मेरी बेस्ट लर्निंग होने वाली है। डॉक्टर काची नागिया आज हमारे साथ हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करा है, प्लस इसके साथ साथ फैशन फील्ड से बहुत लंबे समय तक एसोसिएट रही थी। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू तुषार जी हमें बुलाने के लिए और ये चांस देने के लिए, ग्रेटिट्यूड।
0: मैम ये मेरी एक न्यू चांस होने वाला है, क्योंकि आपकी जब मैंने ऐसे जर्नी के बारे में जाना, फैशन डिजाइनिंग, फैशन फील्ड से रहने के बाद फिर आपने वेदिक टेरो एस्ट्रोलॉजी इसमें स्विच लिया, तो ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है पूरी आज जर्नी में, कि मैं दो चीजों के बारे में जान सकता हूँ, एक तो फैशन वाली चीज के बारे में भी और टेरो कार्ड और एस्ट्रो के बारे में भी। बट स्टार्ट करने के लिए मैं यही जानना चाहता हूँ, ये फैशन से टेरो वाली जर्नी, ये स्विच कैसे आया?
1: मैं शुरू से ही एज एन बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी। ये ना मुझे, मतलब मैं शायद 10th में 11th में ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मेरा एक फैक्ट्री है और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे बैग लेके जाती होती थी कि मैं एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जा रही हूँ। और मेरी मॉम कभी कभी हंसती थी बिकॉज ये क्या है ना। फिर मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, फैशन की, देन आई गॉट मैरिड और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया, आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, मेरा अपना एक ब्रांड है एंड एवरीथिंग वॉज गुड, लाइक यू नो, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद रिलायंस थ्रू एंड थ्रू, यू नो, बिजनेस पर्सन। फिर 2018 मुझे टैरो में हमेशा इंटरेस्ट था, बट 2018 मैं किसी से करवाती होती थी और हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूछ लेती थी। फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो। 2018 मेरी मॉम की डेथ हो गई, तो उन्होंने एक पंडित जी के पास, पहली बार हम गए तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए बने हो। तो तब मुझे लगता था एज अ बिजनेस पर्सन हीलिंग कहाँ यार, हम तो बिल्कुल ही अलग फील्ड से हैं।

0: और जब मॉम की डेथ हुई तो ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए 3 महीने सिर्फ एक पंडित जी के पास बैठ गई, क्योंकि मेरा मन अशांत था, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। देन आई टुक एडमिशन इन भारतीय विद्या भवन, आई डिड टैरो में PhD, आई डिड हीलिंग रेकी कोर्सेस, सो एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
1: PhD इन टैरो।
2: मैम, ये जो आपने डिफरेंस बताया है और दोनों के बीच का रिलेशन बताया और कैसे आपने जर्नी स्विच करी बताया है, मेरे को लगता है बहुत सारी फीमेल यहाँ पर मोटिवेट होने वाली हैं कि आपको रुकना नहीं, आपको अपने चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको ढूंढना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। और ऐसी ही बेस्ट चीजें आगे हम आपको और गाइड करेंगे कुछ गानों के बाद, ओनली ऑन रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आज मेरा लर्निंग सेशन है, आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे मैं जितना ग्रैब कर सकता हूँ, जितना सीख सकता हूँ ना, वही मेरी बेस्ट लर्निंग होने वाली है। डॉक्टर काची नागिया आज हमारे साथ हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करा है, प्लस इसके साथ साथ फैशन फील्ड से बहुत लंबे समय तक एसोसिएट रही थी। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू तुषार जी हमें बुलाने के लिए और ये चांस देने के लिए, ग्रेटिट्यूड।
0: मैम ये मेरी एक न्यू चांस होने वाला है, क्योंकि आपकी जब मैंने ऐसे जर्नी के बारे में जाना, फैशन डिजाइनिंग, फैशन फील्ड से रहने के बाद फिर आपने वेदिक टेरो एस्ट्रोलॉजी इसमें स्विच लिया, तो ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है पूरी आज जर्नी में, कि मैं दो चीजों के बारे में जान सकता हूँ, एक तो फैशन वाली चीज के बारे में भी और टेरो कार्ड और एस्ट्रो के बारे में भी। बट स्टार्ट करने के लिए मैं यही जानना चाहता हूँ, ये फैशन से टेरो वाली जर्नी, ये स्विच कैसे आया?
1: मैं शुरू से ही एज एन बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी। ये ना मुझे, मतलब मैं शायद 10th में 11th में ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मेरा एक फैक्ट्री है और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे बैग लेके जाती होती थी कि मैं एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जा रही हूँ। और मेरी मॉम कभी कभी हंसती थी बिकॉज ये क्या है ना। फिर मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, फैशन की, देन आई गॉट मैरिड और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया, आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, मेरा अपना एक ब्रांड है, एंड एवरीथिंग वॉज गुड, लाइक यू नो, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद रिलायंस थ्रू एंड थ्रू, यू नो, बिजनेस पर्सन। फिर 2018, मुझे टैरो में हमेशा इंटरेस्ट था, बट 2018 मैं किसी से करवाती होती थी और हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूछ लेती थी। फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो। 2018 मेरी मॉम की डेथ हो गई, तो उन्होंने एक पंडित जी के पास, पहली बार हम गए तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए बने हो। तो तब मुझे लगता था एज ए बिजनेस पर्सन हीलिंग कहाँ यार, हम तो बिल्कुल ही अलग फील्ड से हैं। और जब मॉम की डेथ हुई तो ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए 3 महीने सिर्फ एक पंडित जी के पास बैठ गई, क्योंकि मेरा मन अशांत था, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। देन आई टुक एडमिशन इन भारतीय विद्या भवन, आई डिड टैरो में PhD, आई डिड हीलिंग रेखी कोर्सेस, सो एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: PhD इन टैरो। मैम ये जो आपने डिफरेंस बताया है और दोनों के बीच का रिलेशन बताया और कैसे आपने जर्नी स्विच करी बताया है, मेरे को लगता है बहुत सारी फीमेल यहाँ पर मोटिवेट होने वाली हैं कि आपको रुकना नहीं, आपको अपनी चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको ढूंढना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, और ऐसी ही बेस्ट चीजें आगे हम आपको और गाइड करेंगे कुछ गानों के बाद, ओनली ऑन रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: Get ready, Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Glorix Entertainment present Glorix Garba Night, 17 October, शाम 6 बजे से.
0: Venue partner, Immense Residency Hotel, Sector 28, Faridabad. Radio partner, Radio Maharani 89.6 FM.
1: Supporting partners, Art of Living, Faridabad. Studio One, Dance and Fitness.
0: Right partner, Vogue. Women Occupied Cars. Sport partner, Nod Out. Health partner, Ajaveda. Security partner, Big Panther.
1: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
2: Chama chama naach aaje, dhama dham dhol baje, non-stop halla machega.
1: Tickets available हैं all events की site पे या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, डीजे की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ.

0: हम सब अपनी लाइफ में ना बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें बैलेंस करना ही भूल जा रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर कांची नागिया मैम। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यही बात आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत फास्ट हो चुकी है, जिसमें स्ट्रेस भरी लाइफ हो रही है, बहुत सारे करियर स्विचेस हो रहे हैं, फैमिली और पर्सनल लाइफ की जो ग्रोथ है उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के बीच में। तो ऐसी चीज पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे या ये चीज आप कैसे बैलेंस कर रही हैं?
1: छोटी सी सलाह ये है औरतों के लिए कि एक तो यू कांट स्टॉप इन योर लाइफ, है ना, एक फुल स्टॉप नहीं कर सकते। जब मेरे ट्विंस होने वाले थे तो मैं बेड रेस्ट पे थी पूरा एक साल, लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री तब भी चलाई। मैं वो घर ले आई फैक्ट्री, मुझे मना हो गया तो सारे लोग घर बैठ के काम करते थे, है ना। जब हमने ये शुरू किया तो आप सब चीजों के लिए निकाल सकते हो वक्त। मैं ट्रैवल भी करती हूँ और अब मेरी इच्छा है कि मैं एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाऊं जहां मैं हर मंदिर में जाके अपना एक अलग एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर वगैरह करूँ। आप कर सकते हो, मल्टीटास्किंग एक औरत कर लेती है, कर सकती है। आपको खाली टाइम डिवाइड करना आना चाहिए, है ना, एंड लाइफ इज टू शॉर्ट भैया, सब कुछ कर लो।
0: मेरे को लगता है कि मैम ने जो बात बताई है वो सुन के या वो चीज समझ के अब हमें बैलेंसिंग करना तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हुए आएगा, वो बात मैं बिल्कुल बिलीव कर रहा हूँ, बट हमें करना आज से शुरू करना है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Would you make a smash?

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलोसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे, नजर झुका के।

लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।

0: यहाँ पर हम आज अपने एक्सपर्ट से यानी कि हमारी गेस्ट से कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, कांची मैम यहाँ पर हमारे साथ है। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी चीजें लोगों को सजेस्ट करती रहती हैं, बट ऐसा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस आपका है जहां पर आपने किसी को कुछ गाइड किया और वो सक्सेस स्टोरी आप यहां शेयर करना चाहते हो, या उन्होंने आके आपको कुछ फीडबैक उसके बाद दिया हो और आज वो आप यहां पर शेयर करना चाहते हैं?
1: तो मेरे पास अब इस बात को 2 साल हो गए, 2 केसेस थे। मैंने कुंडली पढ़ी उनकी, उसमें मुझे अब्यूज दिख रहा था, है ना, लेडी के लिए। जब वो हस्बैंड वाइफ आए तो वो किसी एंगल से, क्योंकि हस्बैंड एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे पास आते थे, मुझे कहीं अब्यूज लगता ही नहीं था क्योंकि वो इतने अच्छी तरह बात करते थे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ है प्रॉब्लम। फिर वो दोबारा जब आए तो मेरा मन परेशान हो गया, क्योंकि कुंडली में मुझे दिखता था, कार्ड्स में भी दिखता था, और वो अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ते थे, है ना। फिर मैंने अपने फ्रेंड से कुंडली पढ़वाई, उन्होंने कहा हाँ अब्यूज है और तगड़ा वाला अब्यूज है। एक बार उनकी वाइफ अकेले आई कुछ सूट सिलवाने, तो मैंने पूछा, तो मतलब गूज बम्स आ गए मुझे जब पता लगा कि कितना अब्यूज है, है ना। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो यू नीड टू गेट इनटू अ थेरेपी। सो टुडे शी इज क्वाइट बैलेंस्ड, है ना, शी इज कम 50% कम आउट ऑफ इट। सेकेंड केस में एक और कहूंगी, उसमें बेटा और मदर आए, 27 ईयर ओल्ड बेटा था, मदर के साथ आए, मुझे एक और अब्यूज केस लगता था। मैंने जब उनको पूछा तो वो अकेली थी, तो उन्होंने अपने पैर दिखाए जहां मारा हुआ था हस्बैंड ने, फिर रोज मारते थे, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोफेशनल हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। आज वो लेडी अपना घर है उनका और एक अच्छा कैरियर है, है ना, और आई एम हैप्पी टू सी हर, शी इज गॉट आउट ऑफ। तो मैं घर तोड़ने में विश्वास नहीं करती, लेकिन जहां आपको अब्यूज मिल रहा है वहां से आपको हिम्मत करके निकलना पड़ेगा।
0: ये इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, हम पास्ट अपने फैमिली में देखते हुए आ रहे हैं और वो भी शांत रह जाते थे, इस वजह से आगे की जनरेशन भी शांत रह जाती है। बिल्कुल,
1: एक्चुअली मैं पास्ट लाइफ भी करती हूँ, तो मैंने जब उनका पास्ट लाइफ किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मुझे लगा कि ये हर लाइफ में एक अब्यूज था और ये अब यहाँ तोड़ना चाहिए इसको, इस साइकिल को। अगर अभी भी नहीं तोड़ेंगी तो आगे भी ऐसे ही जाएंगे। सो शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, शी इज अ लाइफ कोच नाउ, you know, and beautifully running her life.
0: तो मैम इसके लिए तो थैंक यू, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने किसी की लाइफ में एक ऐसा चेंज लाके दिया कि वो अपनी लाइफ में इस ग्रोथ या इस लेवल पे कर पा रही है।
1: अब मुझे उनको देख के अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच मैम ये बात यहाँ पर रखने के लिए, और मेरे को लगता है जितने भी लिसनर्स है ना वो इस चीज से बहुत मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत कुछ कनेक्ट करने वाले हैं और बहुत कुछ नया यहाँ पर उनको सीखने मिलने वाला है आज इस इंटरव्यू के बाद। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: रिलेशनशिप और मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, कंसर्न करने आते होंगे, रीडिंग कराने आते होंगे वैदिक के थ्रू या टेरो के थ्रू। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, इंसान क्या फेस कर रहा है, या आप उन्हें किस तरह से अप्रोच करके या किस तरह से आप उन्हें सजेस्ट करते हैं?
1: एक वुमन को ये मैसेज देना चाहेगी कि अपनी ना स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं सोचना चाहिए। यू कैन डू इट, है ना। नॉट एट 30, नॉट एट 20, 30, 40, 50 पे तो कभी भी नहीं, है ना। यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन लाइफ। फटाफट फटाफट करो, रुको मत, है ना। यू नीड टू कीप वॉकिंग, एंड व्हेन यू वॉक देन ओनली यू विल फाइंड योर माइंडसेल्फ, है ना।
0: बिल्कुल। अब मेरे माइंड में एक सवाल और स्टक हो गया, PhD इन टैरो, मैम क्या है वो पूरी स्टडी? बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है सोशल मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया पे सीख लिया और फिर लोगों की रीड करना शुरू कर दिया।
1: हाँ जी।
0: बट आपने वो प्रॉपर PhD करा है, तो क्या एक बड़ा डिफरेंस इसके बीच में आप बताएंगे?
1: मुझे लगता है सीखने की कोई सीमा नहीं होती, निकलता ये सब हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है, बट टैरो एक फॉरेन मोडालिटी है। मैंने लंदन से भी सीखा है, अभी मैं 3 दिन का कोर्स भी करके आई हूँ। PhD इन टैरो में क्या है कि पूरे इंटायरली हम अंदर तक जाते हैं, एक कार्ड के मतलब के, एक एक जो उसके अंदर फोटोग्राफ के अंदर सिंबल है उसका क्या मतलब है, और वो दूसरे कार्ड के साथ क्या दे रहा है, उसके प्लैनेट्स क्या है, आपको कब उसकी ज़रूरत है, नहीं है, तो और केस स्टडीज होती है, है ना। तो उससे क्या होता है, जब आपके पास एक कोई जना आता है, इंट्यूशन भी बहुत मैटर करती है इस सब में। तो मैंने मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाई, लेकिन साथ साथ PhD करने के बाद जो इन डेप्थ एक हफ्ते के कोर्स में नहीं आ सकता, है ना। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप इन डेप्थ नहीं जा सकते। तो टचवुड, अभी जब कोई मुझे पलट के कहता है ना कि मैम आप कैसे कर लेते हो जो बोलते हो वो शाम तक हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की।
0: मेरे को लग रहा है जब मेंटोर आपकी तरह हो या गाइडेंस आपकी तरह मिल रहा हूँ मैम, तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जिस स्मूथनेस के साथ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या आप क्या स्टेप फॉलो करती हैं, तो हैट्स ऑफ मैम कि आप ऐसे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रही हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। थैंक यू सो मच उन सब के बिहाफ पे मैं यहाँ पर आपको आज बोल रहा हूँ। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लो

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कभी कभी ना मूड अच्छा करने के लिए किसी बड़ी वजह की नहीं, बस थोड़ी सी अच्छी बातें और फेवरेट गानों की जरूरत होती है। हेलो जी, मैं हूँ पलक और आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो महारानी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया ही होंगे। चलिए, आपके इसी मूड को और भी बेटर बनाने आ गया है आपका अपना शो फिल्मी फ्लेवर, जहां होंगी एंटरटेनमेंट की बातें, इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ढेर सारा म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, इंजॉय कीजिए ये गाना और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: दिवाली अपनी खुशियों में जोड़िए शॉपिंग का चार्म, फैशन का ग्लैमर और सेलिब्रेशन का म्यूजिक। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। एक्सप्लोर एक्सक्विजिट फैशन एंड एक्सेसरीज, ब्यूटीफुल फेस्टिव डेकोर, यूनिक गिफ्ट्स, डिलीशियस फूड एंड सो मच मोर, ऑल अंडर वन रूफ। Mark your calendars, 16th, 17th and 18th October 2026, Friday, Saturday or Sunday, Community Center, Sector 15, Faridabad में। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आइए और इस फेस्टिव सीजन को बनाइए ट्रूली स्पेशल। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली एग्जीबिशन। शॉप, सेलिब्रेट, इंस्पायर। Get ready Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Clorox Entertainment present Clorox Garba Night, 17 October, शाम 6 बजे से।
0: Venue partner Immense Residency Hotel, Sector 28, Faridabad. Radio partner Radio Maharani 89.6 FM.
1: Supporting partners Art of Living Faridabad, Studio One Dance and Fitness.
0: Right partner Woke, Women Occupied Cars. Sport partner Not Out. Health partner Ajurveda. Security partner Big Panther.
1: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
2: Chama chama naach aaje, dhama dham dhol baje, non-stop halla machega.
1: Tickets available हैं all events के site पे, या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, डीजे की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप और उनकी एक अलग शक्ति को समर्पित है, और आज है तीसरा दिन यानी कि माँ चंद्र घंटा का दिन, जो हमें हिम्मत और साहस की याद दिलाता है। और जब बात हिम्मत और अपने हक के लिए आवाज उठाने की हो तो मुझे याद आती है 2022 में आई आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। संजय लीला भंसाली जी की इस फिल्म में आलिया ने गंगूबाई का किरदार निभाया था, जो जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करने के बाद कमाठीपुरा की एक मजबूत पहचान बनी। गंगूबाई सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास की औरतों के हक के लिए भी आवाज उठाती हैं। और आलिया भट्ट की पावरफुल एक्टिंग हो, फिल्म के डायलॉग्स हो या फिर उसका ग्रैंड प्रेजेंटेशन, फिल्म ने ऑडियंस पर एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा था। अजय देवगन भी रहीम लाला के किरदार में नजर आए थे। और आज का दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है, तो इस फिल्म को याद करते हुए बस यही कहना है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अपने हक के लिए खड़े होने का साहस बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की नवरात्रि स्पेशल फिल्म, और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: फ्लेवर।
1: अगर आपको रियलिटी शोज में ड्रामा, सीक्रेट और थोड़ा सा भाई ये क्या हो रहा है वाला एंटरटेनमेंट पसंद है ना, तो ये अपडेट आपके नाम का है भाई। लॉकअप एक बार फिर अपनी जेल का दरवाजा खोलने के लिए रेडी है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली सीजन 2 अनाउंस कर दिया है। हाँ, फिर से नए कंटेस्टेंट्स, नए सीक्रेट और नए कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ सेलिब्रिटीज जेल के अंदर जाने वाले हैं। पहले सीजन में श्रेया कालरा विनर बनी थी और शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर अप रही थी। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फरा और रितेश देशमुख एक बार फिर जेलर डुओ के तौर पर वापस आ रहे हैं। मेकर्स ने अभी रिलीज डेट या कंटेस्टेंट्स की लिस्ट रिवील नहीं की है, बस इतना प्रॉमिस किया है कि इस सीजन में स्टोरीज भी नहीं होंगी, पर्सनालिटीज भी नहीं होंगी और सरप्राइजेस भी नहीं होंगे। तो अब देखना ये है भाई कि इस बार लॉकअप में कौन एंट्री लेगा और किसकी लाइफ के सीक्रेट्स सबसे पहले बाहर आएंगे। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: Sharnaxis.
1: Hey guys, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੌਂਗ? ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ MP3 ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।
2: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बंट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

वाले तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन जब खिलाड़ी भैया कॉमेडी मोड में आते हैं ना तो सीन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अब उनकी नेक्स्ट कॉमेडी को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहा है। खबर है कि अक्षय कुमार एक बार फिर साजिद के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, और इन दोनों ने 2012 में हाउसफुल 2 में साथ काम किया था, और अब लगभग 14 साल बाद ये जोड़ी वापस कॉमेडी के लिए साथ आ रही है। लेकिन इस बार अक्षय के साथ एक और इंटरेस्टिंग नाम है, आर माधवन जी का। केसरी चैप्टर 2 में दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और अब कॉमेडी में साथ नजर आएंगे। फिल्म में श्रिया सरन और दीसा पटनी भी रिपोर्टेडली कास्ट का पार्ट है, और ये स्टोरी मिडल एज मैन के अराउंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड एक कॉमेडी होगी। और इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है, और शूटिंग लंदन में ईयर एंड या 2027 की बिगनिंग में स्टार्ट हो सकती है। तो अक्षय और माधवन को इस बार सीरियस नहीं बल्कि फुल कॉमेडी मोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: क्या आपकी प्लेलिस्ट में एक ऐसी आवाज है जिसे सुनते ही 90s का पूरा एरा आंखों के सामने आ जाता है? मैं बात कर रही हूँ कुमार सानू जी की। 90s में इनकी आवाज लिटरली हर जगह थी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी मिलेनियल्स के साथ साथ जेन जी भी उनके गाने बड़े मजे से सुनते हैं। लेकिन कुमार सानू से जुड़ी एक बात सुनकर शायद आप भी कहेंगे कि ये पॉसिबल कैसे है भाई। कहा जाता है कि 1993 में उन्होंने सिर्फ एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, और ये वही साल था जब उनके बाजीगर ये काली काली आंखें, तेरे दर पर सनम जैसे गाने हर जगह सुनाई दे रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुमार सानू ने लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत कर भी रिकॉर्ड बनाया था। मतलब एक टाइम था जब बॉलीवुड में रोमांटिक सॉन्ग हो और कुमार सानू की आवाज ना हो तो प्लेलिस्ट थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगती थी। तो अगर आपको कभी भी 90s वाली फीलिंग चाहिए हो, बस एक कुमार सानू जी का सॉन्ग लगा देना भाई, मेमोरीज ऑटोमेटिकली रिवाइंड हो जाएंगी। अब मैंने गानों की बात कर दी है तो वक्त गानों का हो चुका है। एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

जिन तलवों को आदत उसका चीजा मीन की, अक्सर पाँव फिसलते उनके उस चिकनी फर्श पे, इन दीवारों से घबराता ये दिल मेरा नादान, इस बेचैनी को केवल ये बेबस खिड़की समझे, देखा शहर पूरा छान कमी रंगों की मिली, कमी समय की कमी उन ठहरे लम्हों की मिली, सबको मंजिल की तलाश कमी रस्तों की मिली, इतनी लाशों की ये

हाथ की मैंड छोड़ गए तेरे पाम भागे, पर बटिया पे निशान आज भी है। सूट पैंट गेर लिए दही पे मानस, पर तेरे मारा वह पगड़ी परेशान आज भी है। तेरे मारा वह पगड़ी परेशान आज भी है।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: गुरुग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग डिवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 एफएम इज योर रेडियो पार्टनर।
2: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
3: कपड़े?
2: हाँ।
3: ज्वेलरी?
2: बिल्कुल।
3: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन,
2: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
3: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा कभी कभी ना प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन इतनी थिन होती है कि पता ही नहीं चलता कि सामने वाला प्यार कर रहा है या बस पॉसेसिव होता जा रहा है। और इसी कंफ्यूजन को लेकर आ रही है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर तू है मेरी किरण, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर में सोनाक्षी है किरण और जहीर है समर, और समर को लगता है कि किरण के साथ उसका एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन किरण क्लियरली उसे डिस्टेंस चाहती है, इतना कि फोन ना करने तक को कहती है। लेकिन समर पीछे हटने वाला नहीं है भाई, और यहीं से स्टोरी थोड़ी अनसेटलिंग होने लगती है। कभी जो हो रहा होता है वो रियल लगता है, कभी लगता है कि शायद किरण की रियलिटी ही उसे कंफ्यूज कर रही है। और जैसे जैसे समर का बिहेवियर पॉसेसिव होता जाता है, सस्पेंस भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। मतलब ट्रेलर देख के एक सवाल तो दिमाग में रह ही जाएगा कि जो हम देख रहे हैं ना, क्या वो सच में हो रहा है। और ये फिल्म आपको 23rd of October 2026 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि ये फिल्म कितनी मिस्टीरियस होने वाली है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लेटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए।

9.6 कुछ हटके हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.2। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अगर आपको रियलिटी शोज में सिर्फ फाइट्स और ड्रामा नहीं बल्कि थोड़ी स्ट्रेटजी, थोड़ा दिमाग और कौन किसके साथ है वाला गेम भी पसंद है ना, तो ये अपडेट बिल्कुल आपके लिए है। प्राइम वीडियो ने अनाउंस कर दिया है अलायंस सीजन 2। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके लिए आपको पूरा एक साल बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। सीजन 2 14 जनवरी 2027 से स्ट्रीम होगा और कुणाल केमू एक बार फिर होस्ट के तौर पर वापस आ रहे हैं। और पहले सीजन में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस के साथ साथ अलायंसेस, चेंजिंग लॉयल्टीज और स्ट्रेटजी के थ्रू गेम में टिकना था। और इस बार मेकर्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाईर स्टेक्स, शार्पर गेम प्ले और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट होने वाले हैं। कंटेस्टेंट्स कौन होंगे ये भी रिवील अभी नहीं हुआ है। तो फिलहाल एक ही सवाल है कि इस बार अलायंस बनेगा या गेम के साथ दोस्ती भी बदल जाएगी। और ये चीज तो 14th ऑफ जनवरी को ही पता चलेगी। लेकिन अभी वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा जी, बॉलीवुड के बातें करते करते वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आज की फिल्मी फ्लेवर को यहीं करते हैं शट डाउन। आप भी अपना मूड मस्त रखिए, गाने गाते रहिए, और हाँ, आज की बॉलीवुड की गपशप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना मत भूलिएगा। मैं हूँ पलक, कल फिर मिलूंगी आपसे इसी वक्त इसी जगह ढेर सारे नए किस्सों के साथ। तब तक सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी। बाय बाय, टेक केयर।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के। 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य, माँ चंद्र घंटा को करेज और प्रोटेक्शन का प्रतीक माना जाता है। रियल लाइफ में भी कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हमें पता होता है कि क्या सही है, लेकिन बोलने या स्टैंड लेने से हम हेजिटेट करते हैं। तो अपनी बात रखने और अपने लिए स्टैंड लेने का वो करेज हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं?
1: हम में से ज्यादातर लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें जज किए जाने का डर या रिश्तों के टूटने का डर होता है। लेकिन माँ चंद्र घंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सत्य की आवाज हमेशा निर्भीक होती है। अपने लिए स्टैंड लेना या सही बात कहना कोई अहंकार नहीं है, यह अपनी आत्मा के प्रति वफादार रहना है। जब आपके भीतर यह क्लैरिटी आ जाती है कि आप जो कह रहे हैं वो न्याय और सत्य के पक्ष में है, तो दुनिया की स्वीकृति का डर अपने आप खत्म हो जाता है। शुरुआत छोटे स्तर पर कीजिए, अपने साथ सच बोलिए, फिर बाहर की दुनिया में अपनी आवाज को मजबूती देना सीखिए।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: तीसरे नवरात्रे की शाम को आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? देखो मौसम अच्छा है, दिन में हल्के फुल्के बादल छाए रहे, बट धूप भी उतनी ही थी, बट गर्मी नहीं थी। रेडियो का गौरव आरजे गौरव, आज गौरव है आप सभी के साथ। थर्ड नवरात्र यानी कि माँ चंद्र घंटा का आज दिन है, और इसी के साथ साथ नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। एंड सुबह से अगर अभी तक थक चुके हैं तो आप सबकी टेंशन, थकान, स्ट्रेस, टेंशन और स्ट्रेस एक चीज़ होती है क्या? चलो एक चीज़ होती भी होगी तो ये सब चीज़ें एक साथ दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास बातें आज बहुत सारी हैं। और कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो मैं खुशियाँ बांटने आया हूँ। आप लोग अपना दुख बांटिए ताकि आपका दुख खत्म हो जाए, कम हो जाए, और मेरे साथ जब खुशियाँ बांटेंगे तब तो मज़ा सही आ जाएगा। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, पटाखे मिल रहे हैं कहीं पर? नहीं, मुझे नहीं मिल रहे ना, मैंने कोशिश करी, किसी ने बोला खेड़ी पुल के पास मिल रहे हैं, मैंने कहा कहाँ मिल रहे खेड़ी पुल के पास, तो मुझे नहीं मिले। आप लोगों को अगर मिल रहे हैं तो बता दीजिए, मैं भी जाके ले लूँगा थोड़े से दो चार, मतलब मैं वो ग्रीन वाले पटाखे लेता हूँ जो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते, ज़्यादा धुआं भी नहीं करते। और खैर अब तो मन ही नहीं करता पटाखे फोड़ने का, अब तो बस दिवाली वाले दिन बस शाम को सबको हेलो हाय हैप्पी दिवाली बोल के फिर उसके बाद घर पे बैठ जाते हैं। हाँ, चार दोस्त आते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं। नहीं, वो नहीं करते जो आप सोच रहे हैं, हम लोग कुछ पकवान बनाते हैं और खाते हैं। खैर दिवाली आने में भी बहुत टाइम है, बट वक्त कैसे तेज़ी से बीतेगा इसका कोई भरोसा नहीं, बहुत तेज़ी से बीतता है, पता भी नहीं चलेगा कि कब दिवाली आ गई। तो चलिए जब दिवाली आएगी तब करेंगे उसके बारे में भी बात। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक गाने चलेंगे, और रेडियो महारानी का कोई कंपटीशन ही नहीं है फरीदाबाद में ब्रो, क्योंकि ये है फरीदाबाद का एक बेस्ट डिजिटल प्लस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सुनिए इस गाने को, नो कॉम्पिटिशन, जस्ट मानक और डिवाइन की आवाज में रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: ओ मेरी

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

ना देसी तू मेट्रो दी तेनू नित दा रोना पै जूगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत दुखद खबर आई है सामने। ऑल दो गाना खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, इससे शायद आप लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। कल मेट्रो में लड़ाई हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आसपास की मेट्रो स्टेशन ट्रेन थी, और उसमें क्या हुआ बताता हूँ। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एक सिर्फ मेट्रो सीट के लिए लड़ाई हो जाती है दो लोगों के बीच में, और एज डिफरेंस सुनोगे आप लोग भी शौक हो जाओगे। एक इन हिज 20s और दूसरा इन हिज लाइक लेट 50s, 48 एज उनकी थी, और इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। और फिर जब हाथापाई हुई तो जो 48 ईयर्स के थे उनकी मौत हो जाती है। और फिर इन सब के बाद ना, अब सब लोग इंटरनेट पे डिवाइड हो चुके हैं। डिवाइड क्यों हुए हैं, पहले बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि क्या हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि एक सीट के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है सड़क पर ना, आप लोगों को लोग दिखेंगे जो पीछे से हॉर्न बजाते रहेंगे, पैं पैं पैं पैं, वो बीच में से घुसने की पूरी कोशिश करेंगे, बट अगर गाड़ी टच हो गई वहीं पर आधा घंटा वो बर्बाद करने को तैयार है। तो लाइक ब्रो, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम रुक क्यों रहे हो? तुम सीधा चले जाओ ना, अगर गाड़ी टच भी होगी आप चले जाओ, अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पर लोग जल्दबाजी सड़क पर दिखाते हैं, काम में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ मेट्रो सीट के लेकर, तो इस पे ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है। बहुत बार ऐसे किस्से हमारे सामने आए हैं जब कोई भी गेस्ट या फिर कोई भी इंसान जो दूसरे शहर से आता है, उस बेचारे को पता नहीं है कि सीट कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। हम लोग उसको अगर गाइड कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। बट कुछ लोग होते हैं जो सीट के लिए लड़ पड़ते हैं, ये वेमेन सीट है मैं क्यों दूँ, मतलब ठीक है वेमेन सीट है तो वेमेन्स को दोगे ना या फिर नहीं दोगे। और मैंने काफ़ी बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लड़कियां भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़कियां भी बुजुर्गों को सीट नहीं देती है, उसकी भी काफ़ी सारी वीडियोस सामने आई है। तो इन सब पर सबकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट राय हो सकती है, और मैं यहाँ कोई क्लैश नहीं करवाना चाहता। तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि कल को अगर आप भी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और हो सकता है कि आपको कोई बोले कि अपनी सीट मुझे दे दो, तो अगर आपको लगता है वो इंसान नीडी है तो उसको सीट जरूर दीजिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, मैं हूँ गौरव आपके साथ, और बातें और गाने ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

एक बहुत पुराना स्कैम है, उसको अब नए तरीके से करने लग गए हैं स्कैमर्स। इसे कहते हैं जंप डिपॉजिट स्कैम। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें ना आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई जाती है और फिर उसके बाद आपसे हो जाता है स्कैम। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। अब ये जंप डिपॉजिट स्कैम है क्या? SBI ने इसको लेकर अलर्ट किया है। इसमें क्या होगा, ठग ना आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे कुछ पैसे और फिर उसके बाद कॉल करेंगे, बोलेंगे गलती से ट्रांसफर हो गए सर, आप ना एक काम करो ये UPI से ये पैसे वापस कर दो, हम आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और बोलेंगे लाइन पर रहो सर, हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ये पैसे। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट करेंगे आपको ट्रांसफर, ना ना ना, ये 100-500 हज़ार मैक्सिमम, इतने उससे ज़्यादा ट्रांसफर नहीं करेंगे। और मान लेते हैं इन्होंने आपको 670 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जब रिटर्न में मांगेंगे ना, तो इसमें ये लोग आपके पास एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, पेमेंट रिक्वेस्ट जब आएगी उसमें लिखा होगा 678, 670 रुपये बोल रहा हूँ ना मैं, तो 670 और एक और जीरो ऐड होएगा आगे, मतलब 6700 रुपीज़ का आपके साथ ये लोग स्कैम करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर आपको सावधान रहना है, अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से कभी भी ऐसे कोई भी पैसा आता है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि भाई तो अपना नंबर बता दे, मैं उस नंबर पर भेज दूंगा पैसे। नहीं तो आपको सबसे पहली चीज़ किसी भी अननोन नंबर को तो आपको उठाना ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध नंबर है, मीन्स कोई स्कैमर है, पॉसिबल स्कैमर है, तो उसको सबसे पहले ब्लॉक कर दो। और फिर उसके साथ साथ अगर कोई कॉल आती भी है, बाई चांस हो भी जाता है काफ़ी बार कि मान लो मेरा एक नंबर है 96548 जो भी है एग्जैक्ट अभी असली वाला बोलने वाला था, तो हमारा जो रेडियो का नंबर है 96548 9696, मान लेते हैं इस पर गलती से किसी के पैसे आ जाते हैं तो मैं उनको वापस कर दूंगा, बट मैं पूरी तरह से पुष्टि करूंगा कि हाँ ये सच भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ कभी भी कोई ट्रांजैक्शन ना करके बैंक से आप कॉन्टैक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आप फिर इसके थ्रू जंप डिपॉजिट स्कीम से बच जाएंगे। बस ऐसे ही गेम भी चलती रहेगी, और अभी रेडियो महारानी पर गानों की गेम चलेगी, तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

कैन यू गाइस बिलीव कि एक भिखारी की 21 बीवियां हो सकती है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और इस बंदे की एज भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 35 साल का है ये इंसान। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अब ये जो भिखारी की मैं कहानी बता रहा हूँ, ये इंडिया में तो हो ही नहीं सकता दूसरी जगह पे, बांग्लादेश का ये भिखारी है, नाम है मोरू मियाँ। अब इस बंदे की टोटल 21 बीवियाँ हैं, 35 साल इसकी उम्र है, और ये कह रहा है कि मैं परेशान नहीं होता या परेशान हो भी जाता हूँ, मगर एक चीज़ से परेशान होता हूँ, वो है सबका नाम याद रखने में परेशानी होती है मुझे। अब इसने खुद बोल रहा है, कह रहा है मैंने खुद शादी की बात किसी से भी नहीं करी है, सब लड़कियाँ खुद से मेरे पास आती हैं कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। और कह रहा है काफ़ी सारी लड़कियां तो मुझसे एज में बड़ी भी हैं, और जब वो मेरे पास आती हैं ना तो मैं ना बुरा नहीं लगे उनको, इसलिए मैं मना भी नहीं कर पाता कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इसलिए मना भी नहीं करता भाई ये किसी भी लड़की को। ये तो सिर्फ उसी एम्प्लॉय की तरह नहीं हो गया फिर से, जो एम्प्लॉय आता है हमारे ऑफिस में और वो बॉस को किसी भी काम से मना नहीं करता। हो सकता है आप भी वही एम्प्लॉय हो जो बॉस को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, फिर बॉस चाहे आपसे अपने घर के काम करवा ले, बोले बेटा मेरे बच्चे का एक असाइनमेंट उसे पूरा कर दे, आप बोलोगे ठीक है सर कर दूंगा तो ऐसी ही कहानी है इनकी भी, 35 साल का ही बंदा है, किसी को मना नहीं कर पाया और इतना नेक दिल बोल रहा है अपने आप को। बट इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये अभी तक एग्जैक्ट सामने नहीं आई, क्योंकि ये तो सिर्फ बयानबाजी है ना, असलियत में क्या है ये तो नहीं पता ना। एक्चुअली ऐसे ही सेम टू सेम मेरे जिम में भी एक लड़का है जो स्टाफ है, मतलब क्लीनिंग स्टाफ जो है, वो भी ये कहता कहता मेरी दो बीवी हैं, दोनों सगी बहनें हैं। बट जब रियलिटी मैंने चेक करी तो पता लगा उसकी एक ही बीवी है और वो सबको पागल बनाता है, तो हो सकता है ये भी पागल बना रहा हो। खैर इन सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही और भी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे रेडियो महारानी 89.6 पर। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें. कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है.

अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सभी लोगों से, डू यू थिंक कि हम लोगों की जॉब जो है वो हमारी इज्जत डिसाइड करती है? हमारी इज्जत है वो हमारी जॉब डिसाइड करती है, ये बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक वीडियो तो नहीं, वीडियो हाँ वीडियो भी है, इस पे एक पोस्ट भी है वायरल हो रहा है, जिसमें एक 22 साल के लड़के ने बताया है कि उसकी ना सैलरी थी ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए महीना, 95,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी थी, और उसकी सैलरी अब छूट चुकी है। और जैसे ही उसकी सैलरी छूटी, मतलब नौकरी छूटी है बोलूँगा, सैलरी नहीं छूटी, नौकरी छूटी, क्योंकि सबको पता छटनियाँ हो रही है आजकल, AI की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी जैसे ही जॉब छूटी तो मम्मी पापा का बिहेवियर डिफरेंट हो गया। कह रहा है कि मतलब प्लेट से खाना हटा देते हैं और फिर बोलते तुझे पैदा करके गलती की। और इस लड़के के अकॉर्डिंग इसने बोला कि 2 दिन से खाना नहीं खाया था, और नौकरी जाने के बाद उससे मतलब समझ आया कि असली अहमियत बचत की है, मतलब सेविंग्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जब इसकी एक महीना की एक सैलरी 1,00,000 रुपये आ रही थी ना, तब ये खुला खर्चा कर रहा था, बट आज की डेट में इसके पास पैसे नहीं है, तो इसकी वजह से इसके पेरेंट्स भी इसे रूठ चुके हैं, ऐसा इसका कहना है। और कह रहा है फैमिली ने ना उसका कूलर भी उससे ले लिया, मतलब कमरे में कूलर लगा रखा था तो उससे कूलर भी ले लिया। बट एक सवाल मेरे मन में आया, अगर 1,00,000 रुपये सैलरी है तो क्या कमरे में कूलर ही रखेगा क्या, AC नहीं लगा देगा? तो देखो मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि हाँ आपकी सैलरी किसी किसी जगह पे आपकी इज्जत डिसाइड कर सकती है, बट आपके घर के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, और इस पर सबकी राय डिफरेंट हो सकती है, आई नो। तो जितने भी राय है आपकी, आप लोग हमें रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आके भेज सकते हैं। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना रेडियो महारानी 89.6।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

कुछ लोग गलत जगह पे दिल लगा लेते हैं और दिल जब लगता है तो फिर उनका छूटता नहीं है, चाहे फिर वो आशिकी हो या फिर हो स्मोकिंग। लोग स्मोकिंग से भी दिल लगा लेते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। मेरे जितने भी नोन मैन लोग, क्लोज फ्रेंड्स में या फिर मैं बोलूं कलीग्स में, कोई भी इंसान है ना जो स्मोकिंग करता है, वो इंसान के पास हमेशा एक बात होती है। वो बोलता है स्मोकिंग तो मैं छोड़ना चाहता हूँ पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलते होंगे भाई स्मोकिंग मैं करता हूँ रोज़, मुझे अच्छा नहीं लगता बट फिर भी करनी पड़ती है, लत लग चुकी है। अब देखो, एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट ढंग से बोलो तो, उनका नाम है डॉक्टर सुरेश। अब इन्होंने एक पूरी वीडियो वायरल करी है, वीडियो जारी करी है, बोलूँगा वायरल तो अपने आप हो गई। इन्होंने बोला है अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप निकोटिन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको देखो एक ऐसा प्लान इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है। सबसे पहले छोड़ने की तारीख आपको तय करनी पड़ेगी कि आज क्या तारीख है, 13, तो आज से मैं 20 तारीख के बाद स्मोकिंग नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद आपको यही करना है कि 20 तारीख के बाद आपको स्मोकिंग नहीं करना, और आपको अपनी फैमिली को भी बता देना है, फैमिली को बताओ। और फिर सुबह की चाय और काम के ब्रेक या फिर मैं बोलूँ अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये सारे ना ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जैसे काम में ब्रेक मिलता है तो ट्रिगर पॉइंट है कि हम लोग दोस्तों के साथ ब्रेक पे चले जाते हैं 15 मिनट के लिए, तो वो आपको नहीं करना है। सुबह की चाय के साथ भी आपको इसको स्मोक नहीं करना है। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं और उसके साथ आप स्मोक करते हैं तो आपको वो ट्रिगर पॉइंट पहचानना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, निकोटिन की तलब होती है और कॉमनली ये 3 से 5 मिनट तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही आपको तलब मचती है ना तो आपको 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मतलब 4 सेकेंड तक आपको सांस लेनी है, 7 सेकेंड के लिए उसे होल्ड करना है और 8 सेकेंड तक उसको एक्सहेल करना है अपनी बॉडी से। तो इस तरह से आप स्मोकिंग छोड़ने में काफ़ी हद तक माहिर हो जाएंगे और आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। और जितने भी लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं ना, मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, जिस दिन आप लोग ठान लोगे ना उस दिन आपको ये काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि आप सभी के लिए अच्छे अच्छे गाने चलाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।

0: पास सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

रामायण 2026 और ये मूवी आने वाली थी पहले 26th ऑफ अक्टूबर को, मगर अब इसकी डेट चेंज हो गई है और रामायण की डेट चेंज होकर क्या हुई है इसके बारे में करेंगे बाद, मगर रुकिए जरा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। नवंबर 6 साल 2026 रामायण पार्ट 1 आने वाली है और अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है लुक ऑफ सनी देओल, क्योंकि सनी देओल का लुक सभी लोग वेट कर रहे हैं। रामायण में रणबीर कपूर एज श्री राम एंड यश एज रावण एंड साई पल्लवी एज माता सीता, तो ये पूरा का पूरा कास्ट है। इसमें सनी देओल जी को हनुमान जी का रोल दिया गया है, बट आप सभी को बता दूं सनी देओल का लुक अभी तक वायरल नहीं किया, अभी तक सामने नहीं आया है, तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है लुक, कैसा होने वाला है लुक, तो वेट करेंगे हम लोग इसका। बट इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है और वो है जटायु। जटायु का रोल अभी ट्रेलर में हम लोगों को दिख गया है एंड जटायु की वॉइस भी दी गई है। एक्चुअली जो जटायु है वो तो एनिमेशन के थ्रू बनाया गया, बट उनकी जो वॉइस है वो दी है अनुपम खेर साहब ने। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर निकल कर आ रही है जैसे जैसे मूवी पास आती जा रही है, क्योंकि मूवी से मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आप लोगों को भी होगी नो डाउट। डायरेक्टर नितेश तिवारी की मूवी है और प्रोड्यूसर यश है, अमित मल्होत्रा है, तो यहाँ पर मूवी में रणबीर कपूर की अभी तक की एक्टिंग जो हम लोगों को ट्रेलर से दिखाई गई है वो तो अमेजिंग है, बट अब देखते हैं कि असलियत में मूवी जब आ जाएगी क्या वो उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे ही आदि पुरुष भी आई थी जो लोगों ने उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा रखी थी बट वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी, मानते हो कि नहीं। तो चलिए अब जब मूवी आएगी तब हम लोग उसको देखेंगे ज़रूर, नवंबर 2026 तारीख 6 देखने जरूर जाएंगे और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक गाने रेडियो महारानी पर मैं चलाऊंगा। मेरा नाम है गौरव, आप सुन रहे शो HR 896।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? बहुत देर से बातें कर रहे थे हम लोग। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, नवरात्रे चल रहे हैं मेरे घर में ना, मम्मी जब फास्ट रखती हैं, मैं भी फास्ट रखता हूँ कभी कभार, मम्मी जब फास्ट रखती हैं तो वो कुछ भी नहीं खाती, लाइक पानी पियेंगी पूरे दिन भर, और रात को सेब खा लेंगी, चीकू वगैरह वगैरह, और मतलब फ्रूट्स खा लेंगी, वो भी रात को, सुबह से शाम तक सिर्फ पानी। और फिर उसके बाद मैं कुछ लोगों के घर जाता हूँ तो वो लोग फास्ट तो रखते हैं बट कभी साबूदाने की खीर खा रहे हैं, कभी साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, तो कभी वो कुट्टू के आटे के पकोड़े भी खा रहे हैं। तो यहाँ पर ना अभी बात करते हैं साबूदाने की। नवरात्रि में अगर आप रोज़ साबूदाना खाते हो तो ये सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जयेश शर्मा, उन्होंने आकर बताया है कि देखो ये टैपियोका प्लांट है, इसकी जड़ से बनाया जाता है साबूदाना, और उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें ना कार्ब्स है ना कुछ है, वो स्टार्च है सिंपल। साबूदाना एक्चुअली में ब्राज़ील में उगता है, इंडिया में तो उगता भी नहीं है, और ये हाईली प्रोसेस्ड होता है और प्योर स्टार्च होता है जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। आई नो साबूदाने की खीर बहुत अच्छी लगती है, बट ये चीज़ ना वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ वाइल खाने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि चल रहे हैं, 9 दिन लपेट के आप लोग साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हो, साबूदाना की खीर खा रहे हो, या फिर साबूदाना के पापड़ बना के खा रहे हो। नहीं करना है आप लोगों को ये सब, इन सब चीज़ों को करने से बचिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसी और भी चीज़ें मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। और हाँ, उन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग तो व्रत पे हैं, व्रत पे हमारा फास्ट है, कुट्टू के आटे के पकौड़े क्यों खा रहे हो, बता दो ना मुझे। चलिए अभी फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए, सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ में आप सभी के लिए ये गाना, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

गुरुग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए. एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से. और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है. के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट. स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है. बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285. एंटरप्राइजिंग डिवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर.

रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है और आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल है फीमेल्स के लिए। नवरात्रे चल रहे हैं और आज मैं लेकर आया हूँ कुछ तो स्पेशल। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और वो स्पेशल चीज है वोक, WOK, वुमेन ऑक्यूपाइड कार, के से कार। और इसी के साथ साथ बता दूं, ये एक पहली सिर्फ और सिर्फ वुमेन द्वारा चलाई गई गाड़ी कैब सर्विस है जो कि दिल्ली NCR में चल रही है, जिसमें फरीदाबाद भी इंक्लूडेड है। फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव, इन एरियाज में एक कैब मिल जाएगी जस्ट टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी। सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने 360 डिग्री सर्वेलेंस कैमरा लगाया हुआ है, SOS सपोर्ट बटन भी लगाया हुआ है फ्रंट में भी, रेयर में भी। और इसी के साथ साथ

0: बहुत सारी चीज़ें एडिशनल है, जैसे कि ड्राइवर असिस्ट है और अम्ब्रेलाज भी ये लोग कैरी करते हैं, बुजुर्गों की भी मदद करते हैं। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वोक से अंजलि। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे नवरात्रों में हम माँ शक्ति की पूजा करते हैं, आपके हिसाब से वोक किस तरह वुमेन एम्पावरमेंट को रियलिटी में बदल रहा है?
1: माँ शक्ति को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ जो है वो मतलब अपना घर भी देख रही होती है और सारा बाहर का भी चीजें कर रही होती है, तो इससे हमारा मतलब इंक्रीज होता है कि मतलब सारी चीजें हैंडल करके भी अपना कर रहे हैं।
0: तो अंजलि जी की ये जो स्टोरी है ये तो काफी इंस्पायरिंग है और इसमें और भी बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है, बट इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि अकेले ट्रैवल करती हैं, और या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो अकेले ट्रैवल करती हैं, या फिर कोई बुजुर्ग हैं, उनको आप जरूर बोलिएगा कि वो कैब सर्विस जरूर लें। और आप कैसे बुक कर सकते हो? एप्पल ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। वोक की फुल फॉर्म है वुमेन ऑक्यूपाइड कार, मतलब W

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि दिल्ली एनसीआर में जॉब करती हैं और आपको हो जाता है लेट कभी वापस आने में, तो आप कैब बुक करती हैं या फिर आप भी मेट्रो से ट्रेवल करती हैं?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। जब भी लेट हो जाता है ना, तो लोगों के मन में एक सवाल आता है, खासकर वेमेंस के मन में एक सवाल आता है कि हम लोग अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कैसे, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है लोग कैब्स पर भरोसा नहीं करते हैं। तो इसी का भरोसा दिलाने के लिए आया है वोक। वोक मीन्स WOK, वुमेन ऑक्यूपाइड कार। ये सोलली 24/7 वुमेन्स के द्वारा चलाई गई कैब सर्विस है जो कि दिल्ली NCR में, और उन्हीं से जुड़ी है हमारे साथ एक फीमेल कैब ड्राइवर अंजलि। तो अंजलि जी, वोक वुमेन्स ड्राइवर्स को सिर्फ जॉब ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, और इसमें बहुत सारी स्टोरीज होंगी, तो कोई इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे आप?
2: मेरे साथ एक बार हुआ था, मतलब वो मतलब एज ज्यादा उनकी एज थी, तो वो मतलब उनका एक लगेज था, वो मतलब वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर उसका उनका लगेज उठा के गाड़ी में रखा, फिर उनको आराम से गाड़ी में बिठाया, फिर उनको ड्रॉप करके फिर मैं निकली वहां से।
0: तो अगर आप भी कैब सर्विस लेने में थोड़ा सा कतराते हैं तो ये स्पेशल आपके लिए है। WOK वोक, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। WOK फोन नंबर है 9994388855। और इसी के साथ साथ वोक के बारे में और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।
3: I've been

0: का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: जब भी हम लोग अपनी फैमिली मेंबर या फिर हम लोग अपनी फैमिली में किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे या फिर किसी विमेन के लिए कैब बुक करते हैं, तो हमारे मन में 100 टाइप के सवाल आते हैं। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, है कि नहीं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जो मैंने अभी सवाल किया कि जब भी अपने फैमिली में वुमेन्स के लिए या फिर ओल्ड एज किसी पर्सन के लिए या फिर किसी बच्चे के लिए हम लोग कैब बुक करते हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि सेफ होगा या नहीं होगा। तो आप सभी को बता दूं, इसी के लिए आया है वोक कैब। वोक मीन्स WOK, वुमेन ऑक्यूपाइड कार, या फिर हम बोल सकते हैं वुमेन्स ओल्ड एज एंड किड्स। तो इसी में हर सफर सुरक्षित है, हर महिला सशक्त है, और 24/7 आप सभी के लिए ये अवेलेबल है। डेली कम्यूट्स, फैमिली विजिट्स, लेट नाइट रिटर्न्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर, आउट स्टेशन ट्रिप्स, सब के लिए अवेलेबिलिटी है वोक के थ्रू। तो वोक से जुड़ी है आज हमारे साथ अंजलि। तो अंजलि जी, 360 डिग्री कैमरा, SOS बटन और सेल्फ डिफेंस ट्रेन्ड ड्राइवर्स जैसे फीचर्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: बहुत ज्यादा, ताकि हमारे साथ बाय चांस ना हो, लेकिन अगर होता भी है तो हम उस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हमने मतलब ये सब चीजें क्लास करके फिर हम इसमें ज्वाइन किया।
0: बिल्कुल अंजलि जी, एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग भी काफी बार मन में सोचते हैं कि अगर किसी के लिए कैब बुक कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारी दीदी के लिए, हमारी मम्मी के लिए या फिर छोटी बहन के लिए, किसी के लिए भी, तो हम लोगों के मन में भी सवाल आता है कि क्या ये सेफ होगा। तो मुझे लगता है कि लोग जो है वो बहुत ही सही है, क्योंकि उधर वेरीफाइड वुमेन्स ड्राइवर है, जितनी भी राइडर्स है ना, वो सारी की सारी, उनका बैकग्राउंड चेक हुआ है और सेल्फ डिफेंस ट्रेन वुमेन ड्राइवर्स हैं। और इसी के साथ साथ 360 डिग्री सर्वेलेंस भी है, फ्रंट रेयर एंड कैबिन कैमरा भी उसमें अंदर है, और साथ ही साथ SOS सपोर्ट बटन भी है। तो आई गेस ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसने भी लिया है। और इसी के साथ साथ मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, फरीदाबाद में अगर आप रहते हैं और आपको कभी रात को निकलना है और आप सोचते हैं कि कैब सेफ नहीं है, तो आप जा सकते हैं वोक कैब के साथ, वुमेन ऑक्यूपाइड कार, या फिर हम बोलें वुमेन ओल्ड एज और किड्स के लिए ये स्पेशल कैब सर्विस। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए और भी ढेरों गाने लेकर आएंगे। सुनिए इस गाने को, मैं हूं गौरव आपके साथ बात है, और गाने भी चलते रहेंगे।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: जब भी हम अपने फैमिली में किसी फीमेल मेंबर के लिए कैब बुक करते हैं तो हमारे मन में सवाल होता है ना कि ड्राइवर कौन आएगा, राइडर कौन आएगा, क्या वो सेफ है भी या फिर नहीं, क्या इस कैब में जाना सेफ है भी या फिर नहीं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? और हम लोग आज बहुत देर से बात कर रहे हैं वो कैब सर्विसेज के साथ, यानी कि WOK वुमेन ऑक्यूपाइड कार, और WOK के नाम से आपको इनकी ऐप मिल जाएगी जहां से आप आसानी से कैब बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक भी मेल राइडर आपको नहीं मिलेगा, सारी की सारी फीमेल ट्रेन स्टाफ है जिनका बैकग्राउंड चेक हुआ है, एंड इसी के साथ साथ वो सेल्फ डिफेंस में भी ट्रेंड है, SOS बटन है गाड़ी के अंदर, तो और क्या चाहिए। बट यहाँ पर ना मेरे मन में एक सवाल आता है, सबसे मेजर सवाल, अगले 5 सालों में आप वो को कहाँ देखना चाहते हैं?
1: जहाँ आज तक मतलब सारी ओला उबर की राइड्स है सेम चीजों पे, हम मतलब उससे भी ऊपर देखना चाहते हैं।
0: वैसे बहुत छोटी छोटी स्पष्ट आंसर दे रही हैं। खैर ये सब चीजें तो बातें होती रहेंगी, मगर इसके साथ साथ आप लोगों के लिए गाने चला रहा हूँ। और हाँ, फिर से बता देता हूँ, अगर आपकी फैमिली में कोई भी विमेन या ओल्ड एज पर्सन या फिर कोई छोटा बच्चा है जिसके लिए आप कैब बुक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं सेफ्टी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वोक ऐप WOK, और उधर से आप विमेन राइड बुक कर सकते हैं, मतलब ड्रिवन बाय वुमेन फॉर वुमेन। तो इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना जैस्मिन सैंडल्स की आवाज में, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: सारी गाल

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवर

मेरे। एक बहुत पुराना स्कैम है, उसको अब नए तरीके से करने लग गए हैं स्कैमर्स। इसे कहते हैं जंप डिपॉजिट स्कैम। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें ना आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई जाती है और फिर उसके बाद आपसे हो जाता है स्कैम। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। अब ये जंप डिपॉजिट स्कैम है क्या? SBI ने इसको लेकर अलर्ट किया है। इसमें क्या होगा, ठग ना आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे कुछ पैसे और फिर उसके बाद कॉल करेंगे, बोलेंगे गलती से ट्रांसफर हो गए सर, आप ना एक काम करो ये UPI से ये पैसे वापस कर दो, हम आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और बोलेंगे लाइन पर रहो सर, हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ये पैसे। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट करेंगे आपको ट्रांसफर, ना ना ना, ये 100-500 हज़ार मैक्सिमम, इतने उससे ज़्यादा ट्रांसफर नहीं करेंगे। और मान लेते हैं इन्होंने आपको 670 रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब ये जब रिटर्न में

ना, तो इसमें ये लोग आपके पास एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, पेमेंट रिक्वेस्ट जब आएगी उसमें लिखा होगा 678, 670 रुपये बोल रहा हूँ ना मैं, तो 670 और एक और जीरो ऐड होएगा आगे, मतलब 6700 रुपीज़ का आपके साथ ये लोग स्कैम करने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर आपको सावधान रहना है। अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से कभी भी ऐसे कोई भी पैसा आता है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि भाई तो अपना नंबर बता दे, मैं उस नंबर पर भेज दूंगा पैसे। नहीं तो आपको सबसे पहली चीज़, किसी भी अननोन नंबर को तो आपको उठाना ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध नंबर है, मीन्स कोई स्कैमर है, पॉसिबल स्कैमर है, तो उसको सबसे पहले ब्लॉक कर दो। और फिर उसके साथ साथ अगर कोई कॉल आती भी है, बाई चांस हो भी जाता है काफ़ी बार, कि मान लो मेरा एक नंबर है 96548 जो भी है एग्जैक्ट अभी असली वाला बोलने वाला था, तो हमारा जो रेडियो का नंबर है 96548 9689 6, मान लेते हैं इस पर गलती से किसी के पैसे आ जाते हैं, तो मैं उनको वापस कर दूंगा, बट मैं पूरी तरह से पुष्टि करूंगा कि हाँ ये सच भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ कभी भी कोई ट्रांजैक्शन ना करके बैंक से आप कॉन्टैक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आप फिर इसके थ्रू जंप डिपॉजिट स्कीम से बच जाएंगे। बस ऐसे ही गेम भी चलती रहेगी, और अभी रेडियो महारानी पर गानों की गेम चलेगी, तो सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.9।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो तुम सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी।

कुछ लोग गलत जगह पे दिल लगा लेते हैं और दिल जब लगता है तो फिर उनका छूटता नहीं है, चाहे फिर वो आशिकी हो या फिर हो स्मोकिंग। लोग स्मोकिंग से भी दिल लगा लेते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। मेरे जितने भी नोन मैन क्लोज फ्रेंड्स में या फिर मैं बोलूं कलीग्स में, कोई भी इंसान है ना जो स्मोकिंग करता है, वो इंसान के पास हमेशा एक बात होती है। वो बोलता है स्मोकिंग तो मैं छोड़ना चाहता हूँ पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलते होंगे भाई स्मोकिंग मैं करता हूँ रोज़, मुझे अच्छा नहीं लगता बट फिर भी करनी पड़ती है, लत लग चुकी है। अब देखो एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट ढंग से बोलो तो उनका नाम है डॉक्टर सुरेश। अब इन्होंने एक पूरी वीडियो वायरल करी है, वीडियो जारी करी है, बोलूँगा वायरल तो अपने आप हो गई। इन्होंने बोला है अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप निकोटिन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मतलब देखो एक ऐसा प्लान इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है। सबसे पहले छोड़ने की तारीख आपको तय करनी पड़ेगी कि आज क्या तारीख है, 13, तो आज से मैं 20 तारीख के बाद स्मोकिंग नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद आपको यही करना है कि 20 तारीख के बाद आपको स्मोकिंग नहीं करना, और आपको अपनी फैमिली को भी बता देना है, फैमिली को बताओ, और फिर सुबह की चाय और काम के ब्रेक या फिर मैं बोलूँ अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये सारे ना ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जैसे काम में ब्रेक मिलता है तो ट्रिगर पॉइंट है कि हम लोग दोस्तों के साथ ब्रेक पे चले जाते हैं 15 मिनट के लिए, तो वो आपको नहीं करना है। सुबह की चाय के साथ भी आपको इसको स्मोक नहीं करना है, और अगर आप अल्कोहल लेते हैं और उसके साथ आप स्मोक करते हैं तो आपको वो ट्रिगर पॉइंट पहचानना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, निकोटिन की तलब होती है और कॉमनली ये 3 से 5 मिनट तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही आपको तलब मचती है ना तो आपको 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मतलब 4 सेकेंड तक आपको सांस लेनी है, 7 सेकेंड के लिए उसे होल्ड करना है और 8 सेकेंड तक उसको एक्सहेल करना है अपनी बॉडी से। तो इस तरह से आप स्मोकिंग छोड़ने में काफ़ी हद तक माहिर हो जाएंगे और आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। और जितने भी लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं ना, मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, जिस दिन आप लोग ठान लोगे ना उस दिन आपको ये काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि आप सभी के लिए अच्छे अच्छे गाने चलाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।

के अंदर फैशन आईकॉन स्वैग ऑन फ्लीक, बॉलीवुड वालों को स्वैग सिखा दू, ब्रांड जो पहनूं उसकी सेल बढ़ा दू, मेरे बारे तुझे दुनिया बताएगी, खेलना तू चाहती है तो खेल खिला दू।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

आज गौरव है आप सभी के साथ। नवरात्रे चल रहे हैं और फास्टिंग की बात जब आती है तो हम लोगों के मन में सवाल आते हैं कि हाँ यार फास्टिंग तो कर रहे हैं बट क्या हम लोगों को जिम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप जिम जा सकते हैं, क्या है सही है, हल्की वॉक कीजिए, हल्की लाइट कार्डियो कीजिए, मतलब आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल पर वॉक कर सकते हैं, मगर हाइड्रेशन ठीक ठाक होना चाहिए। और कोई भी अगर सिम्टम्स हो आपको वीकनेस के तो आप तुरंत छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ वेट ट्रेनिंग। फास्टिंग में अक्सर क्या होता है, हम लोग कुछ खा नहीं पाते ढंग से, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन इंटेक हमारा कम हो जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करनी है क्योंकि हैवी लिफ्टिंग में एनर्जी और परफॉर्मेंस कम हो सकती है। तो इस वजह से आप लोगों को हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल टोटली अवॉइड करनी है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को और भी ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं, आपका वाटर इंटेक जो है वो कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं, या फिर आप जिम जब जा रहे हैं तो आपको कहीं वीकनेस तो नहीं लग रही। तो अगर हल्की सी भी वीकनेस लग रही है तो आपको जिम उस दिन अवॉइड करना है। तो ये था जिम ब्रो आज का, यानी कि मैं आपका जिम ब्रो बनकर आया हूँ। और अक्सर इस टाइम पर हम लोग कोई ना कोई हेल्थ के लिए अपडेट लेकर आते हैं या फिर मैं कोई कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ जो जिम में होती है, या फिर हो सकता है कि आप लोग काफ़ी बार कोई गलतियाँ कर देते जिम में। ऑल्दो मैं कोई सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ बट मैं उतनी ही चीज़ें बताऊँगा जितनी आपके लिए और मेरे लिए सेफ होगी। और ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, बातें और गाने यूँ ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

नवरात्रे चल रहे हैं और सच सच बताना, आज आप लोगों ने साबूदाना की खिचड़ी खाई है या साबूदाना की खीर, या फिर हो सकता है कुट्टू के आटे के पकौड़े खा लिए हो। कुछ लोग आलू उबाल के भी खा लेते हैं, कहते हैं अनाज नहीं है। फिर और क्या है वो? आप लोग फास्टिंग को गलत तरीके से क्यों लेते हैं? फास्टिंग करने से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी में। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ। देखो, जब नवरात्रे आते हैं ना, दो टाइम पे, चैत्र का नवरात्र और दूसरा जो मार्च वाला आता है, आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको, एक तो मार्च वाला और एक इस टाइम जो आता है। तो इन नवरात्रों में आप लोगों के ना बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। सबसे पहली चीज़, मौसम चेंज होता है। तो मौसम चेंज होता है तो ये 9 दिन अगर आप फास्टिंग कर लेते हैं तो आपकी बॉडी टोटली इस मौसम को अडेप्ट करना शुरू कर देती है। अब देखिए, संडे को ही बारिश हुई है, संडे को नहीं, मंडे को सुबह सुबह बारिश हुई है। संडे की शाम को लग रहा था बारिश होगी, बट हुई नहीं। ऑल दो ये मौसम अब चेंज हो रहा है, तो जब आप इसमें फास्टिंग करते हैं ना, तो आपकी बॉडी अडेप्ट करती है आने वाले मौसम को, और फिर उसी के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर भी, और आप बीमारियों से बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर जो लोग फास्टिंग के नाम पर पूरे दिन भर 2 किलो सेब, 1 किलो आलू, 1 किलो आलू तो नहीं, 1 दर्जन केले और बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, कैसी फास्टिंग कर रहे हो तुम लोग? फास्टिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को कुछ नहीं खाना। तो आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी फैमिली में कोई मेंबर होंगे जो ऐसे फास्ट करते हैं, तो उनको बोलो ये फास्ट नहीं है, ये बस अपने मन को संतुष्टि दे रहे हो तुम, बस नथिंग एल्स। एंड पूजा तो सच्चे मन से होनी चाहिए, है ना। चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजाने वाला हूँ। उन्हीं में से एक गाना ये वाला, और मेरा हो गया जाने का टाइम। मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 9, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ।

0: रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था, तुरंत चाहिए था। घर वाले परेशान थे, हर नंबर पर फोन मिलाया, किसी ने कहा देखते हैं, किसी ने अपन...
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, मैं हूँ आपकी इश्क बाजिया की इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर आपका अपना शो इश्क बाजिया। और अब वक्त है उस हिस्से का जहाँ थोड़ी सी बात होगी मोहब्बत की, थोड़ी सी जिंदगी की और थोड़ी सी उन फीलिंग्स की जिन्हें हम नॉर्मली बोल नहीं पाते, क्योंकि ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। और आज की शाम की शुरुआत करते हैं अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर आ गया है और ये महीना मेरा बहुत ही पसंदीदा महीना होता है। मुझे लगता है अक्टूबर का अपना ही मूड होता है यार। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक, शाम को आसमान का थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाना, चाय कॉफी का अचानक ज्यादा अच्छा लगना और बिना किसी खास वजह के भी मन का थोड़ा अच्छा हो जाना, शायद मौसम का असर है या शायद अक्टूबर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी बड़ी खुशियों का नाम नहीं है, कभी अच्छी कॉफी भी काफी है, कभी कोई फेवरेट गाना, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी किसी दोस्त का अचानक फोन और कभी बस बालकनी में बैठकर ठंडी हवा को महसूस करना। लेकिन आज हम अपनी जेनरेशन में एक फनी सी चीज करते हैं, हमें खुशी चाहिए लेकिन वो भी थोड़ी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट सनसेट चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्ट करियर, परफेक्ट वीकेंड, और अगर ये सब एक साथ नहीं मिला तो लगता है लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ है, जबकि शायद खुशी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, शायद अक्टूबर की तरह ही है। थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा म्यूजिक और बस मूड बन गया। तो आज इस अक्टूबर में थोड़ा स्लो नहीं बल्कि थोड़ा मोर अलाइव होने की हम बात करेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी चीज है, हर दिन उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है यार। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये है हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: दिवाली अपनी खुशियों में जोड़िए शॉपिंग का चार्म, फैशन का ग्लैमर और सेलिब्रेशन का म्यूजिक। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। एक्सप्लोर एक्सक्विजिट फैशन एंड एक्सेसरीज, ब्यूटीफुल फेस्टिव डेकोर, यूनिक गिफ्ट्स, डिलीशियस फूड एंड सो मच मोर, ऑल अंडर वन रूफ। मार्क योर कैलेंडर्स 16th, 17th and 18th October 2026, Friday, Saturday or Sunday, Community Center, Sector 15, Faridabad में। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आइए और इस फेस्टिव सीजन को बनाइए ट्रूली स्पेशल। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली एग्जीबिशन। शॉप, सेलिब्रेट, इंस्पायर।
2: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
3: कपड़े?
2: हाँ।
3: ज्वेलरी?
2: बिल्कुल।
3: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन,
2: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय रितु, 70+ एग्जीबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जीबिशन, 15th October रेडिसन ब्लू फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
3: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय रितु, बिगर बेटर बोल्डर।

वेलकम बैक, शो है इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आपने नोटिस किया है हम हैप्पीनेस को भी प्रोजेक्ट बना देते हैं। मंडे को सोचते हैं फ्राइडे आएगा तो खुश होंगे, फ्राइडे को सोचते हैं वीकेंड आएगा तो खुश होंगे, वीकेंड पर सोचते हैं वेकेशन आएंगे तो खुश होंगे, वेकेशन में सोचेंगे काश रोज ऐसी लाइफ होती, और जब रोज ऐसी लाइफ नहीं होती तो वापस मंडे से शिकायत शुरू। मतलब हैप्पीनेस भी हमारी वेटिंग लिस्ट में पड़ी रहती है, और शायद इसी चक्कर में जो हमारे पास है हम उसका मजा नहीं लेते हैं। अक्टूबर की शाम को ही देख लीजिए, कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई लाइफ चेंजिंग अनाउंसमेंट नहीं आया, बस हवा थोड़ी अच्छी लगने लगी, सूरज थोड़ा जल्दी नरम हुआ और सड़क किनारे पेड़ों से कुछ पत्ते गिरे, लेकिन सीन पूरा सिनेमैटिक हो गया। शायद हमें भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा सिनेमैटिक होना चाहिए, बिना किसी रीजन के अच्छे कपड़े पहन लेना, अकेले कॉफी पीने निकल जाना, अपने पसंदीदा गाने पर फुल वॉल्यूम में गाना, किसी दोस्त को अचानक कॉल करके कहना चल आज मिलते हैं, क्योंकि हर खुशी के पीछे कोई बड़ी वजह हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी आज मन किया भी एक परफेक्टली गुड रीजन है, और आज की जनरेशन को शायद ये परमिशन खुद को देनी चाहिए कि हर चीज प्रोडक्टिव होनी जरूरी नहीं, हर दिन सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं, हर मोमेंट इंस्टाग्राम वर्दी होना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट सिर्फ हमारे लिए होते हैं, और शायद वही सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। मैं हूं गीत, और अक्टूबर की इस खूबसूरत शाम में एक और खूबसूरत सा एहसास लेकर ये गाना सुनते हैं।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

अक्टूबर में ना एक चीज बहुत प्यारी सी लगती है, ये महीना आपको थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक बना देता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और ये है इश्क बाजियां। अब ये रोमांस सिर्फ किसी इंसान के साथ होना जरूरी नहीं, कभी अपने शहर से प्यार हो जाता है, कभी शाम के आसमान से, कभी किसी पुराने गाने से, कभी सड़क किनारे लगी छोटी सी चाय की दुकान से भी, और कभी कभी बस अपने आप से। हम इतने बिजी हो गए हैं ना कि अपने साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। फोन हाथ में है, ईयरफोन्स कान में है, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। दो मिनट खाली बैठो, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, लेकिन कभी अक्टूबर की हवा में फोन थोड़ा नीचे रख कर देखिए, शायद आपको पता चले कि आसपास कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। किसी पेड़ पर नई कोपल, किसी घर की बालकनी पर रखे पौधे पर फूल, सड़क पर शाम की रोशनी, किसी के हाथ में गर्म चाय, और फिर शायद आप सोचें, यार लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, मैं बस इसे देख नहीं पा रही हूँ। हमें हर समय कुछ हासिल करने की जल्दी रहती है, लेकिन कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए भी होते हैं। तो इस अक्टूबर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बस कहीं जाइए, अपना पसंदीदा गाना लगाइए, कुछ अच्छा खाइए और बिना किसी गिल्ट के एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, कभी कभी इसे थोड़ा सा फील भी करना पड़ता है। मैं हूँ इश्क बाजियां के गीत और आप सुन रहे हैं इश्क शायराना रेडियो महारानी पर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली की। तो अक्टूबर से मेरी सबसे फेवरेट बात पता है क्या है? ये महीना हमें कोई बड़ी स्पीच नहीं देता, बस मौसम बदल देता है। हवा बदलती है, सुबह बदलती है, शामों का रंग बदलता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन मूड हमारा थोड़ा थोड़ा बदल ही जाता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, हर चीज को ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं, बस कभी कभी अपना रूटीन बदल कर देखिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, किसी दिन रास्ता बदल कर जाइए, नया गाना सुनिए, किसी ऐसे दोस्त को कॉल कीजिए जिससे महीनों से बात नहीं हुई है, किसी नए कैफे में बैठकर कॉफी पीजिए। छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी चीजें तो दिन को दिन बनाती हैं, और शायद यही अक्टूबर का सीक्रेट है। नई शुरुआत हमेशा जनवरी की पहली तारीख को नहीं होती, कभी वो अक्टूबर की किसी शाम को भी हो सकती है, किसी रैंडम डिसीजन से, किसी अचानक निकली ड्राइव से, किसी नए गाने से, किसी नए आइडिया से, या बस इस थॉट से कि चलो आज थोड़ा अपने तरीके से जीते हैं। तो अगर अक्टूबर की हवा आज आपके शहर में भी थोड़ी बदल गई है तो उसे सिर्फ महसूस मत कीजिए, उसके साथ अपना मूड भी बदल दीजिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा गाइए, थोड़ा प्यार कीजिए, और सबसे जरूरी, खुश रहने के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह मत ढूंढिए, क्योंकि कई बार एक अच्छी शाम, एक अच्छा गाना और आपके अपने फेवरेट इंसान से दो बातें, बस इतनी सी चीजों में भी पूरी कहानी बदल जाती है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये था इश्क शायराना। अक्टूबर अभी अभी नया है तो देखते रहिए, हो सकता है इस महीने आपकी जिंदगी भी कोई खूबसूरत सा नया सीन आपको दिखा दे। तो अब इस सीन में थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करते हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये था इश्क शायराना।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्ट्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी।

दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियां, यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियां बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे, रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

फिर से स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा। और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलोसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैट्रिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं

हुई याद, और शायद कहीं बस इतना ही आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि ये शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

तो ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई दे, कोई पुराना गाना बजे तो वो इंसान अचानक आपके पास बैठा हुआ लगे। यही है रेट्रो इश्क, पुराने वक्त की कहानी लेकिन एहसास बिल्कुल आज का। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब इस कहानी को एक खूबसूरत धुन के साथ विदा करते हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, संभाल कर रखी जाती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। स्टे ट्यून्ड, अगली

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद में कर लेंगे, और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं।

कैंसर का, या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना, या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना, या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहां ना किसी को पास करना है

बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: टाइम फॉर अ मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो शायद आज आपको मोटिवेट कर देगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, डॉक्टर काची नागिया यहाँ पर हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड एंड प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैम ने महारत हासिल करी हुई है, प्लस फैशन का भी बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड मैम का रहा है। मैम मैं ये जानना चाहूंगा, जितनी भी नारी नंबर वन है हमारी जो अभी हमको सुन रही है देश भर में, तो उन महिलाओं को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी ताकि वो भी आपसे इंस्पायर हो इनरली और स्ट्रांग बन सके और अपनी एक पहचान कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरी दुनिया में बना सके।
1: चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, यू कांट स्टॉप वॉकिंग, है ना। यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स, दैट्स द वे टू हैव सक्सेस। एंड गाइज, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, एक चीज करके मत बैठ जाओ, है ना। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव द कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो।
0: मीन्स अ लॉट मैम कि आपने टाइम निकाला, हमारे साथ जुड़ी और हमारी जितनी फीमेल्स हैं उन्हें और मोटिवेट करने में इस जर्नी में हमारा साथ आपने दिया, और आई होप आपको गुड हेल्थ के लिए गुड विशेस। मैम मेरी तो बस गुड विशेस यही है कि आपकी हेल्थ जो है वो और अच्छी रहे, आप हेल्दी रहें और ऐसे ही आगे और लोगों को मोटिवेट करती रहें, उनको उनकी लाइफ में एक नया विजन देती रहें जैसे आप अभी तक दे रही हैं। थैंक यू सो मच मैम और फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता फिर आप कह देते पायो जी पायो मैंने

आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, मां प्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, हे शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा, वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं, नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा के, काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव, कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है, बस